107.5 FM आपका रेडियो आपकी आवाज और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारोश साथियों लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा साथ

क्षमा कर देगी। तो साथियों आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुला कर साथियों ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं के अंदर, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पारिषद यानी कि मैं और जागृति भर। आगे बढ़ते हुए इसी शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी अंजलि पारिषद और कशिश पारिषद यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीवाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पारिषद और उनके साथ होंगे जागृति। इसी के आगे दोस्तों शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा संवाद। साथियों ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा संवाद। इसी के बाद दोस्तों फिर से रुख करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारिषद। तो जैसा कि साथियों कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजन गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामिल कर, जहाँ सुनेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों शाम की ये गजल सिर्फ समय नहीं होती बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहाँ बगल का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा गावर रेडियो। तो आइए साथियों अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वापस रेडियो 90.8 FM।

0: आज की सूझा।
1: प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारी स्वभाव, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धन होता है और दूसरी और सुख, किसी को धन संकट होते जब धन का वचन ही संकट और धन का त्याग भी सुख। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी किसी दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी कट धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाता, हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव भी नहीं मिलता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्की गुड़ की ओर खींची चले जाती है। वास्तव में धर्म संकट का कट ईश्वर के निकट जाने का कारण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीतना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने सर पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला मत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से छूटने वाली धार वही भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या दरिद्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाता? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादा निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य है। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि जाने में भी कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय शोक से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का दे, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं?

आपने कहा निशान करिए कि जैया घर में छाव में आपके रहा यह आपने में कितनी शांति है जिन हवा में आपको ठहर लगा ईदी आपका प्रति कई खास रहते है हो गए अगर पेड़ नहीं होता आपने मरते से होगा प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपने जिम्मेदार है एक पेड़ लगाऊंगा पानी में बचा रहूंगा मैं आपके धरती में जीवन दान करूंगा हो गए प्रकृति में बचा हो भविष्य में खतरा हो गए आज कदम है ये अबावाला काल में बदलाव की शुरुआत है वागुरेडियो वाक्सरा संस्था द्वारा चंद्रित प्रसारण

आपके अपने साथ ही जाकर दीपक का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने की कि केवल हम बचत से ही आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि मनीषा, आज के समय में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत तो बनना चाहता ही है। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छा घर हो, सुख सुविधाएं हो, परिवार सुरक्षित रहे और भविष्य की कोई चिंता न हो। इसी उद्देश्य से लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, बचत करने का प्रयास भी करते हैं। जी हाँ, बचत करना निसंदेह छोटा सा एक अच्छी आदत है क्योंकि भविष्य की जरूरत और कठिन समय में सहायक होती है। जी हाँ, लेकिन केवल बचत करते रहना ही अमीर बनने का रास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल पैसा जमा करता रहे और उसे सही दिशा में उपयोग न करे तो वो आर्थिक उन्नति की गति को सीमित कर देता है। जी हाँ, श्रोताओं, समझना बहुत जरूरी है कि केवल बचत से हम अमीर नहीं बन सकते, बल्कि सही निवेश, ज्ञान, कौशल और अवसरों का उपयोग भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम

0: का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं केवल बचत से हम अमीर नहीं बन सकते हैं। जागरण नीचे हम देखते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाना चाहता है। इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और अपनी आय में से कुछ हिस्सा बचाने की कोशिश भी करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बचत करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। साथ ही बचत हमें कठिन समय में सहारा देती है और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन केवल बचत करते रहने से कोई व्यक्ति वास्तव में अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए श्रोता साथी, केवल पैसे जमा करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सही सोच, सही निवेश, मेहनत, कौशल, अवसरों का उपयोग और समय के साथ आगे बढ़ने की समझ भी जरूरी है। जागरूक जी, हम देखते हैं कि कई लोग पूरी जिंदगी पैसे बचाते रहते हैं फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते। दूसरी ओर कुछ लोग अपनी कमाई का सही उपयोग करते हैं, नए अवसर खोजते हैं, निवेश करते हैं और धीरे धीरे आर्थिक रूप से समृद्ध बन जाते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, यह समझना जरूरी है कि बचत और अमीरी दोनों अलग अलग बातें हैं। बचत जीवन की सुरक्षा है जबकि अमीरी आर्थिक विकास और संपत्ति निर्माण का परिणाम है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हमेशा यदि कोई व्यक्ति केवल घर में पैसा रखे या साधारण बचत खाते में जमा करे तो समय के साथ उस पैसे की वास्तविक कीमत कम हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: उदाहरण के लिए छोटा सा, तो आज जो वस्तु 100 रुपए में मिलती है कुछ वर्षों बाद वही वस्तु 150 से 200 रुपए में मिल सकती है। ऐसे में केवल बचाया हुआ पैसा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं रहता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पैसा केवल सुरक्षित रखना ही पर्याप्त नहीं श्रोताओं बल्कि इसे बढ़ाना भी आवश्यक है।
0: जी हाँ,
1: कहा गया है कि जो धन केवल रखा जाए वो धीरे धीरे मूल्य गवा रहा है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को अपने पैसे को काम पर लगाना ही पड़ता है। मनीषा
0: जी हाँ,
1: इसका अर्थ यह है कि बचत के साथ साथ सही निवेश करना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: निवेश वो माध्यम है श्रोताओं जिसके द्वारा पैसा बढ़ता है और व्यक्ति की आय के नए स्रोत भी बनते हैं। आज लोग पैसा, शिक्षा, कृषि, शेयर बाजार, बैंक योजना और कई अन्य क्षेत्रों में निवेश करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना रहे हैं। समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है।
0: जी बिल्कुल चंद्रवती जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बचत करना जीवन की एक अच्छी आदत है। यह हमें कठिन समय में सहारा देती है, जैसे कि अचानक बीमारी, नौकरी जाना या किसी आपद स्थिति में बचाया हुआ पैसा छोटा सा भी हमारे लिए काम आता है। बचत व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।
1: बिल्कुल,
0: एक युवा यदि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाता है जागृति जी, तो वह धीरे धीरे आर्थिक अनुशासन सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: बचत हमें फिजूल खर्चों को रोकती है और जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझाती है। छोटा सा भी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल पैसा जमा करता रहे और जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों का उपयोग न करे तो उसकी आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए बचत जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों, ये सफलता की पूरी कहानी नहीं है।
1: बिल्कुल, जैसा कि हमेशा आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत यही चल रही है कि केवल बचत से हम अमीर नहीं बन सकते हैं। तो श्रोताओं, बहुत से लोग जीवन भर केवल पैसे बचाने में लगे रहते हैं। वे हर छोटी बड़ी खुशी को त्याग देते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका यही कारण है कि उन्होंने अपने पैसे को बढ़ाने के अवसर का उपयोग नहीं किया।
0: जी हाँ,
1: दूसरी ओर कुछ लोग समझदारी से जोखिम लेते हैं, नया काम शुरू करते हैं, नए विचार अपनाते हैं, धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं और इसका अर्थ ये नहीं कि बिना सोच विचार के जोखिम उठाया जाए बल्कि समझदारी और योजना के साथ आगे बढ़ना भी है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल,

0: जी हाँ, मनीषा समय का महत्व भी इस आज के विषय में बहुत बड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: यदि कोई व्यक्ति छोटी उम्र से ही बच्चा तो नीतिश दोनों की आदत डाले तो भविष्य में वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना रहता है। समय के साथ पैसा बढ़ता है और उसका लाभ भी कई गुना हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए युवा अवस्था में केवल पैसा बचाने के बजाय सीखने, अनुभव लेने और नए अवसरों को अपनाने पर भी ध्यान देना होगा।
1: जी हाँ, चंद्र जी आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अमीर बनने वाले लोग केवल सुरक्षित रास्तों पर ही नहीं चल रहे, वे सोच समझ कर जोखिम लेना भी सीखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा डरता रहे कि पैसा खर्च हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा या असफलता मिल जाएगी, तो वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और जो अवसर आते हैं उन्हें भी खो देता है। युवाओं को समझना चाहिए कि हर सफलता के पीछे मेहनत और थोड़ा जोखिम जरूरी होता है। नया काम शुरू करना, नई स्किल सीखना या व्यवसाय शुरू करना, इसमें छोटा साथियों शुरुआत में डर लगता है, लेकिन वो भी आगे चलकर सफलता का कारण भी बनते हैं। साथ ही जागृति जी हम देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि हर खर्च रोक देने से भी अमीर बन जाएंगे, लेकिन जरूरत की चीजों पर खर्च न करना छोटा साथियों सही नहीं है। यदि कोई युवा अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर पैसा खर्च नहीं करेगा तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? छोटा साथियों, सही जगह किया गया खर्च वास्तव में भविष्य का निवेश होता है। इसीलिए युवाओं को समझना चाहिए कि समझदारी से खर्च करना जरूरी है, केवल कंजूसी करना ही नहीं।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज डिजिटल युग में आए तो बहुत सारे

0: प्रगति के लिए आय की कई स्रोत बनाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, परिवार और समाज के लिए आर्थिक समझदारी की जरूरत है। कई बार लोग बच्चों को केवल बचत करना सिखाते हैं लेकिन निवेश और वित्तीय शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं देते हैं।
1: जी हाँ,
0: यदि बचपन से ही बच्चों को धन प्रबंधन, मेहनत, निवेश और जिम्मेदारी का ज्ञान दिया जाए तो वे भविष्य में और अधिक सफल बन सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी सच है कि केवल अधिक कमाना ही अमीर नहीं होती।
1: जी
0: सच्ची अमीरी वो है श्रोताओं जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट होता है, आत्मनिर्भर होता है, सुरक्षित महसूस करता है। यदि किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो तनाव और असुरक्षा में जी रहा है तो वास्तव में अमीर नहीं कहलाएगा। इसीलिए धन के साथ संतुलित जीवन बहुत जरूरी है श्रोता साहब। अच्छे संबंध और नैतिकता भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: इसके अलावा मनीषा हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि दान और सहयोग की भावना भी व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति केवल पैसा जोड़ने में लगा रहता है वो कभी कभी जीवन के वास्तविक आनंद से दूर हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: वही जो व्यक्ति समाज के लिए सोचता है, दूसरों की मदद करता है और अपने संसाधनों का सही उपयोग करता है वह सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है।
1: जी बिल्कुल चाचाजी जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज भी गाँव में युवाओं के पास आगे बढ़ने के कई अवसर हैं, जैसे कि आधुनिक खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, डिजिटल सेवा, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑनलाइन का काम और छोटे छोटे व्यवसाय जैसे कई क्षेत्र हैं जहां मेहनत करके अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। यदि श्रोता साथियों ग्रामीण युवा केवल बचत करने की बजाय अपने कौशल और काम पर ध्यान दें तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही चाचाजी जी हम देखते हैं कि जीवन में बचत और निवेश दोनों का संतुलन भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति पूरा पैसा खर्च कर दे तो भविष्य असुरक्षित हो सकता है और यदि कोई व्यक्ति केवल पैसा ही जमा करता रहे तो उसका विकास भी रुक जाएगा। इसीलिए सही रास्ता यह है कि श्रोता साथियों हर व्यक्ति पैसा बचाए, कुछ निवेश करे और कुछ स्वयं को बेहतर बनाने में लगाए। जागरूक जी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को कहना चाहेंगे कि केवल बचत से हम अमीर नहीं बन सकते।
0: बिल्कुल,
1: बचत जीवन की सुरक्षा देती है लेकिन अमीरी और सफलता के लिए मेहनत, कौशल, निवेश, नई सोच और सही निर्णय भी जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: आज के युवाओं को केवल पैसा जमा करने की सोच से बाहर निकलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखना और आगे बढ़ना चाहिए। जो युवा अपने समय, प्रतिभा और अवसरों का सही उपयोग करते हैं जागृति जी, वही वास्तव में सफल और समृद्ध बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथी बचत करें लेकिन उनके साथ अपने सपनों, क्षमताओं पर भी निवेश करें, यही सच्चे आर्थिक सफलता का रास्ता है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे श्रोता से मनीषा हम कहना चाहेंगे कि साथियों जैसा कि बचत जीवन की आवश्यक आदत है लेकिन केवल बचत करके कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। अमीरी के लिए व्यक्ति को अपने ज्ञान, समय और धन का सही उपयोग करना पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: जो व्यक्ति मेहनत के साथ समझदारी से आगे बढ़ता है, जोखिम लेने का साहस रखता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए हमें केवल पैसा बचाने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि उसे बढ़ाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के उपाय भी खोजने होंगे ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और समृद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए साथियों सुन लेते हैं।

निगाह रखते हैं, उम्मीद है कि जो बातें थी कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ के माध्यम में बचत को लेकर आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले के संगीत कैसे लगे उसके लिए आप हमें डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागड़ा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3।

साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल को और आपके अपने साथी जागरूक भट्ट को नमस्कार।

0: अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर।
1: स्वीकार कीजिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो बाबा रेडियो 90.8।
1: हाजिर हुए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि अभिभावकों का साथ बच्चों के जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कशिश के बच्चों का जीवन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर सबसे पहली और गहरी छाप उनके अभिभावकों की पड़ती है। माता पिता केवल बच्चों को जन्म ही नहीं देते बल्कि उनके व्यक्तित्व, सोच, व्यवहार और भविष्य की दिशा भी देते हैं।
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि एक बच्चा अपने घर के वातावरण से ही सीखता है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे समस्याओं का सामना करना है, कैसे अपने सपनों को पूरा करना है।
0: बिल्कुल
1: कहा जाता है कशिश कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होती है, उसके पहले शिक्षक उसके अभिभावक।
0: जी हाँ,
1: आज के समय में दोस्तों जब समाज तेजी से बदल रहा है, तकनीकी का प्रभाव बढ़ रहा है और बच्चों के सामने अनेक चुनौतियाँ आ रही हैं, तब अभिभावकों की भूमिका पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। केवल आर्थिक जरूरतें ही नहीं दोस्तों, बल्कि बच्चों को भावनात्मक सहारा, सही मार्गदर्शन, समय और संस्कार देने की उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना साथियों को पहले हम गीत सुनवा दें यहाँ पर।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप देखिएगा बाबा रेडियो 90.8 पर।
0: जी हाँ,

0: साथ ही के बाद फिर से रुक करते हैं कैरेक्टर से बचपन में। जैसा कि गीत से पहले ढेर सारी बातों को जानना था कि किस तरीके से अभिभावकों का साथ बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे शिक्षा साथी को समझाना चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने में कमजोर था। शिक्षक अक्सर उसे डांटते थे। धीरे धीरे बच्चा खुद को दूसरों से कम समझने लगा, लेकिन उसकी माँ हर दिन से समझाती थी कि तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें थोड़ा और प्रयास करना है। के साथ बैठकर पढ़ाई करवाती, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करती, उससे कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करती। कुछ वर्षों बाद वही बच्चा अपनी मेहनत और माँ के विश्वास की वजह से एक सफल शिक्षक बना। उसने एक दिन कहा कि अगर मेरी माँ ने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देता। ये कहानी हमें बताती है उसका साथियों कि अभिभावकों का विश्वास बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। अभिभावकों का साथ बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। छोटा पैसा सुविधाएं और आधुनिक संसाधन बच्चों को कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत व्यक्तित्व, सही सोच और जीवन जीने की समझ केवल परिवार से मिलती है। बच्चे पौधे की तरह होते हैं जिन्हें प्यार, समय, मार्गदर्शन और विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन अभिभावक बच्चों के साथ मित्र की तरह जुड़े, उनकी भावनाओं को समझे और हर परिस्थिति में उनका साथ दे तो बच्चे न केवल सफल इंसान बनेंगे बल्कि अच्छे नागरिक बनेंगे। एक बच्चे की सफलता के पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं होती बल्कि उसके माता पिता का त्याग, धैर्य और विश्वास भी शामिल होता है। हर अभिभावक को यह समझना चाहिए कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत महंगे खिलौनों की नहीं बल्कि अपने माता पिता के समय और साथ की होती है।
1: जी हाँ, तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि बच्चों का जीवन केवल किताबों, स्कूल या सुविधाओं से नहीं बनता बल्कि उनके आसपास मिलने वाले प्यार, विश्वास और मार्गदर्शन

0: मूल्यों का सामना अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। हम देखते हैं कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार अभिभावक बच्चों की जरूरतों को केवल भौतिक चीजों तक ही सीमित समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता अपने पद सम्मान और समय की होती है। आपको बताना चाहेंगे कि एक बच्चा तब सबसे ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करता है जब उसे ये भरोसा है दोस्तों कि उसकी बात को सुनने वाला है, उसकी गलतियों को सुधारने वाला कोई है और उसके सपनों को समझने वाला कोई अपना उसके साथ मौजूद है।
1: जी
0: और यही

0: दर्शन बच्चों को केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे बच्चों को यह सिखाते हैं कि सफलता केवल जीतने में नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और अच्छे जवाब में है। बिल्कुल परिवार का वातावरण ही बच्चों के चरित्र का निर्माण करता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग होता है तो वही गुण बच्चों के व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है। यदि सच है कशिश कि हर बच्चा अलग होता है, किसी में कला की प्रतिभा होती है, किसी में खेल की तो किसी में नेतृत्व की क्षमता। ऐसे में अभिभावकों का कर्तव्य केवल तुलना करना नहीं बल्कि बच्चों की विशेषताओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। जब बच्चों को अपने परिवार से प्रोत्साहन मिले तब वे डर और संकोच से बाहर निकलकर अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। जी हाँ, समाज में मानसिक समस्याएं, तनाव और अकेलापन ये संकेत देते हैं कि बच्चों के साथ संवाद और भावनात्मक जुड़ाव पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। यदि अभिभावक बच्चों के दोस्त बन जाए, उन्हें डांटने से पहले समझाने की कोशिश करें और उनके मन की बात को सुने तो कई समस्याएं शुरुआत में ही समाप्त हो सकती हैं। बिल्कुल, बच्चों को केवल सफल इंसान बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें संवेदनशील, जिम्मेदार और अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति बनाना भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल, तो ऐसे में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अभिभावकों का साथ बच्चों के जीवन में एक दीपक की तरह होता है जो अंधेरे रास्ते में भी सही दिशा दिखाता है। हम देख सकते हैं कि माता पिता का विश्वास बच्चों के मुखड़े को मजबूत करेगा और उनका प्यार और निजी बच्चों के जीवन को सुरक्षित और सुंदर बनाएगा। साथ ही जिस बच्चे को अपने परिवार का साथ मिलता है वह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न देती है फिर भी वह टूटता नहीं बल्कि हर चुनौती का सामना करने की ताकत जुटा ही रही है। इसलिए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे जरूरी है साथियों अभिभावकों का स्नेह, संवाद, विश्वास और हर कदम पर उनका साथ।
1: बिल्कुल, तो कृषि शिक्षा के आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से डेढ़ साल बातें हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से जाने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा देते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ।
0: जी हाँ,

0: पत्र द्वारा हमारे इस पते पर
1: सुश्रुता साथ लिख लीजिए। अमर पता, अमर पता है कैलन 56 वागाटी नगर 8 FM गाँव हॉस्टुपुपला बाथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@bansara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। नमस्ते।

स्वागत कर रहे हो हमारे आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में। होवे भाई हाजिर हो गया हूँ कार्यक्रम खेती बाड़ी में मनीषा मोहन आज कार्यक्रम में आप चुकी विषय है कि अवेना डेम में आप भाई बहन हैं ये फलदार पौधों तैयार करते करें ये साथ ही आप बाकी रहेंगे हूँ देख रेख करनी है सिंचाई खाद प्रबंधन में हूँ व्यवस्था अभी ही करी सके यही बारा में आज है बात હવેન્જની પણ તણા વિશે આપણે ભાઈ બહેનો માટે ઘણા આકારની વાતે રહેલા અપણ હમણાં કે મોરે ઘરે આપણી વાતે હોય તો ભાઈ બહેનો આપ સાંભળતા રહેજો આપણું રેડિયો આપણી વાતે બાપુ રેડિયો પ્રદર્શનો આટા કરવા

अब रही बात तैयारी, तो हमको सर्वप्रथम तो ये देखना चाहिए कि

0: पौधा लगा रहे हैं वहाँ पे हमको खड्डा करना है, 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट, 3 फीट गहरा 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा खड्डा हमको करना है। और वो 3 फीट खड्डा जो हम करेंगे उसको हमको मिट्टी निकालते समय ध्यान रखना, ऊपर की 1 फीट मिट्टी है उसकी 2 मिट्टी है हम पूर्व दिशा में रखेंगे, दूसरे 3 फीट की मिट्टी है हम पश्चिम दिशा में रखेंगे, और तीसरे जो 3 फीट की मिट्टी है हम उत्तर दक्षिण में किसी भी दिशा में रखेंगे। अब ये मिट्टी हम अलग अलग क्यों रखेंगे, जब हम वो खड्डे को वापिस भरेंगे, क्योंकि हमारी उर्वरक जो जमीन है वो पहले 1 फीट है, फिर दूसरे फीट में थोड़ी कम उर्वरक है, और तीसरे फीट में हम देखेंगे जिनमें सिर्फ कंकड़ पत्थर और वही नहीं है। तो हम जब भी खड्डा भरेंगे तब पहले फीट की मिट्टी सबसे नीचे डालेंगे, उसके बाद दूसरे फीट की, उसके बाद तीसरे फीट की। तो पहले तो हमने खड्डा भरा, 3 फीट की मिट्टी अलग कर और उसको 15 दिन के लिए हमको तेज धूप में उस खड्डे को छोड़ देना चाहिए।
1: जी जी,
0: 15 दिन उसको अच्छा सा धूप में तपने देना चाहिए ताकि उससे जितने भी हमारे कवक के प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे, जितने भी जीवाणु कीटाणु आस पास जो उस खड्डे के हैं वो उससे धूप से खत्म हो जाएंगे, एक तरह से ये उसका ट्रीटमेंट है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। फिर हमको क्या करना चाहिए कि 15 दिन बाद में, अभी हम क्या करते हैं, फिर 15 दिन बाद में हमको आसपास में कहीं से भी थोड़ी पत्तियां या चारा जो आसपास उगा हुआ वो लाके हमको हर खड्डे में डाल देना, डालने के बाद में हमको उसमें आग लगाना चाहिए। खड्डा खोदने से पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लेआउट है पौधों का, वो अगर हम आम लगा रहे हैं अमरूद लगा रहे हैं तो पौधे को फलने फूलने के लिए जगह चाहिए, और साथ में हमने ये भी बोला है कि हम उसमें खेती बाड़ी भी करेंगे, तो हमको जो उनकी दूरी है, और उद्यान विभाग ये बोलता है कि 8 मीटर बाई 8 मीटर का दूरी हमको पौधे से पौधे के बीच में रखना चाहिए, जो हम खड्डा भी खोदेंगे तो उस तरह से, ठीक है, हमको रस्सी से माप लेके और इस तरह से पहले मार्किंग करनी चाहिए, मार्किंग करने के बाद में हम खड्डा खोदेंगे, खड्डा खोदने के बाद 15 दिन को हम खुला छोड़ देंगे तपने के लिए, फिर 15 दिन बाद जब हम उसको भरने की तैयारी करेंगे तब हम क्या करेंगे, कुछ पत्तियां जो है हम इकट्ठी करके खड्डे में डालेंगे, कुछ जो है उस मिट्टी में डालेंगे, गोबर खाद जो है हम दो टोकले जो है मतलब तीनों जो मिट्टी हमने अलग रखी उनके अंदर हम डालेंगे, और उसके बाद हम जो है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो खड्डे में हमने पत्तियां और चारा डाला उसको अंदर जला देंगे, ठीक है, जलाने के बाद में जो गोबर खाद हमने तीनों मिट्टियों में डाला है उनको अच्छी तरह से मिलाने, हाँ, तो इसके साथ ही हम एक एक चीज हमारे पास जो जैविक खाद है जैसे नीम की खड़ी हड्डी का चूरा है ना, इस तरह के जो खाद है वो हमको ये मिट्टी में मिलाना चाहिए, मिट्टी में मिला के अच्छी तरह से हमको मिला देना चाहिए, और खड्डे में जो हमने जो चारा और वो डाला है पत्तियां उनको हमको आग लगा देनी चाहिए, जिससे क्या है कि अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है या उदय का प्रकोप है तो वो वहां से खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल उसको मिक्स करके जो पहली मिट्टी हमने निकाली थी उसको सबसे नीचे भरेंगे, फिर सेकंड नंबर की मिट्टी उसके ऊपर डालेंगे, फिर तीसरे नंबर की जो लास्ट वाली मिट्टी है जो बिल्कुल अनुपलब्ध है उसको हम जो बनाने के लिए सबसे ऊपर डालेंगे, ठीक है, फिर उसके बीचों बीच हम एक निशान लगा देंगे, या हो सकता है कि मक्की का 1-2 बीज के कण है वो वहां बीच में लगा देंगे, और उसके भरने के बाद में जब हम देखेंगे कि मिट्टी है वो बढ़ जाए तो हमको मिट्टी को ऊपर चढ़ा देंगे, फिर चंद्राकार जो छावला है जलान के विपरीत चंद्राकार छावला बना के और उसको खड्डे को हमको वहां, जब भी बारिश आएगी तब वो चंद्राकार छावले में पानी रखेगा और धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर पानी उतरेगा, जब वो खड्डा पकने के बाद में हमको पौधा रोपण करना, तो जब हम देखेंगे कि वो खड्डा पूरी तरह से दब चुका है, जो ऊपर हमने ढेला बनाया वो पूरी तरह से दब चुका है, और एक तरह से उसमें से हम देखेंगे कि वो पूरा खड्डा बैठ गया। बैठने के बाद में जो सेंटर में हमने मक्की के बीज लिया इस तरह का निशान लगाया था वो देखने की हमको वो जर्मिनेट हो गया है और वो निशान बीच बीच हमने इसीलिए लगाया ताकि वहाँ हम उसको उखाड़ के और उसकी जगह हम पौधा लगा सके। पौधा लगाते समय भी हमको ज्यादा उसको खोदना नहीं, जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से एक फिट गहरा हमें खोदना और उसको पानी से अच्छा भरना। पानी से भरने के बाद में जो हमको थैली जो हमारी पौधे की होगी उसको बहुत बारीक से हमको कट लगाना है। हमको ये ध्यान रखना है कि वो कट लगाते समय पौधों की जड़ों को नुकसान ना, और वो पूरा जो जो पौधा जिसमें बंद है वो थैली निकालने से वो पूरा पिंड है वो टूटे, वो पिंड को पूरा का पूरा हमको अंदर उसमें गड्ढे में डाल रखना और बिल्कुल सीधा खड़ा रखना। फिर हमको एक हाथ से पौधे को पकड़ना, फिर उसमें से मिट्टी भरते हुए जाना। जब मिट्टी पूरी भर जाएगी उसमें तब हमको चारों तरफ से पैर से उसको दबा के और अंदर की हवा है उसको बाहर निकालना। तो ये पौधे का सही तरीका। फिर हमारा पौधा है हवा से इधर उधर हिले नहीं, उसके लिए हमको दोनों तरफ हमको लकड़ी लगानी और लकड़ी लगा के और बीच में से हमको उसको बांध लेना है ताकि हवा से वो हिले नहीं, है ना। तो इस तरह का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और 20-25 दिन बाद में जब वो जड़ पकड़ लेगा तब वो आराम से सर्वाइव कर पाएगा। तो सही तरीका पौधा लगाने का है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि फलदार पौधों की दिव्यावरण में कैसे करनी है। यही सर, जैसा कि आपको लेकर भी हमारे कार्यक्रम में बहुत से सुनने वाले हैं कि अभी के समय में आपको लेकर किसान भाई बना सके किन बातों का विशेष ध्यान रखना है।
0: तो किसान भाइयों को सीधा सा, अभी जो आम है इस साल हम देखेंगे कि वैसे ही फसल बहुत कम आई, तो हमको एक तो तेज अंदर आना उसके बचाव के लिए हमको जो है पौधों के टेका हमको लगाना चाहिए। जिन तेलियों पे ज्यादा फल लगे हुए उनको हमको टेका भी देना चाहिए ताकि वो अंदर से ज्यादा हिले और जो प्राकृतिक आपदा है उससे बच सके, टेलियां नहीं टूटे। इन सबसे बचने के लिए हमको जो है पेड़ों के अच्छा मजबूत टेका लगाना चाहिए। इसके बाद जो अभी फल आ रहे हैं तो अभी हमारे पास समय है कि हम थोड़ा उसके चारों तरफ उनको खोद के और अच्छा सा सड़ा हुआ देसी खाद दे सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पकने से पूर्व जो है अभी उनका मैच्योरिटी का समय चल रहा है। आम का हम देखेंगे अभी कुछ समय बाद 5-10 दिन बाद हमें शायद दशहरी आएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पर मल्लिका आ जाएगा, उसके बाद कंगड़ा आएगा। तो इस तरह से जो आम धीरे धीरे आते रहेंगे तो और देसी आम तो हमारा यहाँ का मिठास है वो बहुत अच्छी है और बहुत तरह तरह की। तो अभी जब तक हमारा आम पकने में समय है 10-15 दिन का, तब तक हमको उनमें अच्छा तरह सड़ा हुआ खाद डाल के और अच्छी हमको सिंचाई करनी चाहिए पहले, ताकि उससे आपके जो आम है उनकी पकड़ मजबूत रहे और हवा से वो गिरेंगे नहीं और खाद मिलने से उनकी चमक बहुत अच्छी रहेगी और स्वाद अच्छा आएगा। ठीक है। और इसके बाद जब भी हम उनको जब हम देखते हैं कि विशेष तौर पर हमारा जो किसान भाई है वो जानता है कि जब भी एक आम नीचे गिरता है पक के तब वो बाकी आमों को सबको उतार देता है। तो उस समय उतारते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो है वो गिरे नहीं। गिरने के बाद में जब वो उनको रखे तो बहुत सारे जो आम है उनको हमको छटनी कर देना चाहिए। छटनी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कुछ आम में लगे हुए होंगे, जैसे कुछ पक्षी बैठते हैं या कुछ रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो रोगग्रस्त आम या ऐसे लगे हुए आम या पक्षी खाए हुए आम या कुछ खरोच लगे हुए आम उनको हमको अलग रखना चाहिए, है ना। और बाकी जो स्वस्थ है उनको हमको अलग रखना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से रखना चाहिए और उतारते समय हमको ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: मैं आपको जिम के लिए आपका वैसे समझिए जुड़े तक का पता है आपने ये शुरू करी कथा की खाना खाना बता दी। कि फलदार पौधों की तैयारी करवा मना कर की चीजें ध्यान रखो, मैंने हर तरीके तैयारी करती है और इन्हें साथ ही आम देख रेख के बारे में भी अनुभव करना आशा कर रहा हूँ कि आम भी वातावरण होगा, क्योंकि अपने अनुस्कार की स्थिति सूटा पड़ता है, तो सूटा तो पड़ा

રામ રામ।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी प्रारंभ भट्ट और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जीवकारेश्वर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार का नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपको अपना सामुदायिक रेडियो वाकुटी 90.9 आता है। श्रोताओं, लेकिन हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे साथ परिवार में सम्मानजनक भाषा का क्या महत्व है। जैसे कि मीठे शब्दों में ऐसी ताकत होती है जो टूटते रिश्तों को भी जोड़ती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, परिवार केवल ईंट और दीवारों से बना घर नहीं है, प्रेम विश्वास सहयोग और अपनापन से बना हो संसार होता है जहाँ हर व्यक्ति अपने सुख दुख साझा करता है। परिवार की मजबूती केवल आर्थिक स्थिति या बड़े से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से तय होती है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार बात करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सम्मानजनक भाषा परिवार के वातावरण को सुखद शांत और प्रेमपूर्ण बनाती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे से आदरपूर्वक बात करते हैं तब घर में सकारात्मकता बनी रहती है और रिश्तों में मिलता आती है।
1: बिल्कुल चाटोपी जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रखेंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो साथियों, आप बने रहिएगा वाघा रेडियो नगर।

0: तभी खुशहाल परिवार बनता है। और आज के समय में व्यस्त जीवन में तनाव और मोबाइल की दुनिया में लोगों को चिड़चिड़ा है। कई बार लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से कठोर शब्दों में बात कर बैठते हैं, छोटी सी बात पर गुस्सा करना हो जाता है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं या दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करते हैं। परिवार के रिश्तों को कमजोर बनाते हैं। इसके विपरीत हम देखें कि यदि परिवार में प्रेम और सम्मान से बात की जाए तो बड़े से बड़ा होगा भी आसानी से सुलझ सकता है।
1: बिल्कुल चाहते जी, आपने सभी कहा हम दूसरों को उनके सम्मानजनक भाषा केवल शिष्टाचार नहीं है बल्कि अच्छे संस्कार और मजबूत सम्मान की पहचान है। जिस परिवार में परिवार से सम्मान होता है वहाँ प्यार हमेशा और समझ भी बनी रहती है। यही कारण है श्रोता साथियों कि परिवार में सम्मानजनक भाषा का महत्व केवल घर तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज की दिशा भी तय करता है। सम्मानजनक भाषा का मतलब

de lui se pregătea, lucru care pare mai să fie bun, dar nu rămâne în ce fi de vida mea, dar asta nu fi bine pentru să fie ta bine. Da. Că tot să fie să mă angele cu așa fel și apto mini, băi că pune că să fie o rămâne din dihai de vite. कई बार बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी की ऊँची आवाज़ में बात करने लगते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आने लगती है। यदि बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करें और विनम्रता से बात करें तो परिवार में प्रेम और अनुशासन दोनों बना रहता है। इसी प्रकार बड़ों को भी बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनसे प्यार और सम्मान के साथ बात करनी होगी। जिसे हम कह सकते हैं कि सम्मानजनक भाषा परिवार में विश्वास कराती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात बिना डर से सम्मान पूर्वक कह सकता है, तब परिवार के सदस्य एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, जब वे समस्याएं साझा करते हैं और मिलकर समाधान ढूंढते हैं। लेकिन यदि घर में हमेशा कठोर भाषा का प्रयोग हो तो लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने से डरने लगते हैं, इससे मनमजूरी और तनाव बढ़ता है। बिल्कुल, जागरूक जी आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्वेता साधु के कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चा सबसे पहले बोलना अपने परिवार से सीखता है, घर का माहौल भी उसके संस्कारों की पहली पाठशाला है। अगर परिवार में प्यार से बातचीत, एक दूसरे की बात सुनी जाती है, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होता है तो बच्चे भी बदल सकते हैं। लेकिन घर में हर समय झगड़ा, चिल्लाना, अपमानजनक शब्द, ताने, कटु व्यवहार होता रहता है तो बच्चों के मन में डर, गुस्सा और असुरक्षा बनी रहती है, यानी कि परिवार की भाषा आने वाली पीढ़ी के व्यवहार होते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर रिश्ता संवाद पत्र का होता है। जहाँ शब्दों में सम्मान होता है वहाँ रिश्तों में अपनापन बन जाता है। एक मीठा सा शब्द गुस्सा शांत कर सकता है, दुख कम कर सकता है, टूटे रिश्ते बचा सकता है, विश्वास बना सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा इरादा गलत है, लेकिन कठोर शब्द सामने वाले को कभी चोट पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सम्मानजनक भाषा रिश्तों में सुरक्षा और भरोसे की भावना को पैदा करती है। बिल्कुल, जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत चली गई है कि सम्मानजनक भाषा का क्या महत्व होता है। बात ऐसे ही करें कि बच्चों की सुंदर जी।

0: लेकिन जब बातचीत में ताने, अपमान, गुस्सा, अपव्यय, ऊंची आवाज शामिल होते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। वे डर, तनाव और असुरक्षा महसूस करते हैं। इससे पति पत्नी के बीच सम्मानजनक संवाद केवल उनका निजी नाना नहीं है बल्कि पूरे परिवार के भविष्य भी नहीं होता है। दूसरों के परिवार का अनुभव होते हैं, ज्ञान होते हैं, लेकिन कई बार आप उनके साथ कठोर भाषा में बात करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बात काट देना, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करना, ऊंची आवाज में जवाब देना, ये सब बुजुर्गों को मानसिक रूप से आहत करते हैं। सम्मानजनक भाषा बुजुर्गों को छोटा साथ ही एहसास दिलाती है कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे छोटा साथी की छोटे साथी मीठे शब्द विश्वास को बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण रिश्तों को प्रदान करते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में भी सम्मानजनक भाषा का बहुत महत्व है। पति पत्नी परिवार की नींव होते हैं। यदि वे एक दूसरे से आदर पूर्वक बात करें तो पूरा परिवार खुशहाल होता है। छोटी छोटी बातों पर ताना मारना, अपमान करना या गुस्से में जो कटु शब्द कहना रिश्तों में बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों धीरे सम्मान के साथ बात करें तो कठिन परिस्थितियां भी आसानी से पार की जा सकती
0: है। जी जी,
1: कहा गया है कि सम्मान से सीखी रिश्तों की हो तभी प्रेम भरपूर मिलता है। इसी के साथ आने साथी और बुजुर्ग परिवार का अनुभव और ज्ञान होते हैं। जैसा कि आपने बताया था, उनसे सम्मानजनक भाषा में बात करने के लिए संस्कार उनसे सभी हमारा होता है।
0: जी,
1: सम्मानजनक भाषा के लिए शब्दों का इसमें हमारी भावना की शामिल होती है। कई बार व्यक्ति लिखे शब्द तो बोलता है लेकिन उसके व्यवहार में सम्मान नहीं होता।
0: जी,
1: सच्चा सम्मान तभी माना जाता है जब हमारे शब्द और व्यवहार दोनों अच्छे होते हैं। मुस्कुरा कर बात करना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और उनकी भावनाओं को समझना भी सम्मान नहीं हो जाता है। इसलिए कहा जाए कि अच्छे शब्द और अच्छा व्यवहार यही है रिश्तों का सच्चा
0: श्रृंगार।
1: बिल्कुल, चाहते हैं कि परिवार समाज की पहली इकाई है। अगर परिवार में भाषा खराब होगी तो समाज में भी तनाव और असभ्यता बढ़ेगी। आप सड़क पर होने वाले झगड़े, छोटे रुपया पर अपमान, टिप्पणियाँ और छोटी बात पर बढ़ता गुस्सा इस बात का संकेत है कि समाज में धीर और सम्मान कम होता जा रहा है। सम्मानजनक भाषा सामाजिक सुहाग बनाती है, विवाद कम करती है, सहयोग की भावना बनाती है और समाज में शांति बनाती है। अच्छे समाज की शुरुआत घर से ही होती है। मोबाइल, सोशल मीडिया के दौर में लोग जल्दी प्रतिक्रिया कर लेते हैं। कई बार लोग बिना सोचे कठोर शब्द बोलते हैं। धीरे धीरे यही आदत वास्तविक जीवन में दिखाई देने लगती है। बच्चे और युवा इंटरनेट से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर उन्हें घर में सम्मानजनक सम्मान नहीं मिलेगा तो वे सोशल मीडिया की नकारात्मक भाषा को सामान्य मान सकते हैं। फिर से परिवार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ चलने से हम देखते हैं कि कई बार आर्थिक परेशानियों, काम का दबाव और मानसिक तनाव लोगों को चिड़चिड़ा बना देता है। वे गुस्से में गलत शब्द बोल देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि गुस्से में बोले गए शब्द लंबे समय तक रुक देते हैं। एक कठोर वाक्य आत्मविश्वास तोड़ सकता है, रिश्ते कमजोर कर सकता है और बच्चों के मन में डर पैदा कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है श्रोता साथियों कि तनाव के समय भी सम्मान में संयम रखा जाए।
0: जी हाँ, और इसी के कारण हमारे श्रोता साथियों को हमें कहना चाहेंगे कि श्रोता साथी सम्मानजनक भाषा समाज में भी परिवार की पहचान बनाती है। जिस परिवार के सदस्य विनम्र और आदरपूर्ण होते हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे परिवार में संस्कार और एकता दिखाई देती है। बल्कि विपरीत, जहाँ लोग हमेशा झगड़ते हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ सम्मान कम हो जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बताते हैं कि एक परिवार में पिता बहुत गुस्से से बात देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वे छोटी छोटी बातों पर बच्चों और पत्नी को डांट देते थे, घर

0: छोटे बैठे में स्कूल से आकर कहा, पापा टीचर ने बताया कि मीठे शब्द सबसे बड़ी ताकत होते हैं। बैठे की यही बात अंजलि पिता के दिल को छू गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव आना शुरू किया। अब वे परिवार के लोगों से प्यार और सम्मान से बात करने लगे। कुछ ही समय में घर का माहौल ही बदल गया। जहाँ पहले तनाव था वहाँ अब खुशी और खुशी थी। इस घटना ने पूरे परिवार को सिखाया कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। कहा गया है कि कटु वचन दिल को तोड़ते हैं और मीठे शब्द में चमत्कार होता है। तो हमें भी समझना होगा कि शब्द वापस नहीं दिए जा सकते। एक बार बोले गए कटु शब्द किसी के दिल को खुद ही चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत डालनी होगी। यदि गुस्सा आए भी तो शांत होकर बात करनी होगी। धैर्य और विनम्रता परिवार को टूटने से बचाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति है। सम्मानजनक भाषा केवल अच्छे शब्द बोलने की आदत नहीं है बल्कि एक स्वस्थ परिवार और सभ्य समाज की पहचान है। परिवार में बोले गए शब्द बच्चों के संस्कार, रिश्तों की मजबूती और समाज की संस्कृति तय करती है। बल्कि कटु शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं जबकि सम्मानजनक भाषा टूटे मन को भी जोड़ सकती है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां संवेदनशील, जिम्मेदार और संस्कारी बने तो उसकी शुरुआत घर से संवाद से करनी होगी। हमें समझना होगा कि परिवार का वातावरण केवल सुविधाओं से अच्छा नहीं बनता बल्कि वहाँ बोले जाने वाले शब्दों से बनता है। जहाँ संवाद और सम्मान होता है वहाँ रिश्तों में विश्वास होता है। वो जहाँ विश्वास होता है वही मजबूत परिवार और मजबूत समाज का निर्माण होता है।
0: जी हाँ, क्योंकि कहा भी गया है कि सोच समझ कर ही हमें बात को बोलनी चाहिए और सम्मानजनक भाषा परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। यही रिश्तों को मजबूत बनाती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है और घर के वातावरण को सुखद बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: मीठे और आदरपूर्ण शब्द किसी भी परिवार को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। इसी रिश्तों पर हमें हमेशा अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम, धैर्य और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। यही खुशहाल और मजबूत परिवार की पहचान है।
1: बिल्कुल, तो जानवती जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं, अब समय तो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे।

0: Hari-hari cuaca selalu kemarin itu pakai tulis tulis. Apa mana aspek kalian orang ini cuaca hari ini sangat sangat sangat. Selagi, uskhi dia apa nih? Sujung tulis tulis pemasaran sebenarnya sangat turut wala mengalami.
1: Jika sudah sahaja dikunci, hamaran bata hari kerjaan cuaca selalu. Warga tuh itu nak berusaha mengatur dan kampung itu kupula wakter kempas nasional itu. Hamaran pin code number ni 3001. और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथ जो आपने प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है radio@vaghana.com।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय इस नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जीवन और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: स्वागत रेडियो 90.9 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर।
1: जी हाँ,
0: आज के कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। मनीषा, आज हम जिस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करने वाले हैं वो विषय है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका स्वास्थ्य हम कैसे संभाल रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे मुकाबले बहुत कम होती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में उन्हें कई बीमारियाँ बहुत जल्दी घेर लेती हैं, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा लें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: आज हम बात करने वाले हैं घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: कोशिश हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, बचपन युवावस्था फिर बुजुर्ग अवस्था, हर पड़ाव अपने साथ नई जिम्मेदारियों लेकर आते हैं। जिस प्रकार बचपन में बच्चों को सहारा और देखभाल की आवश्यकता होती है साथियों, उसी प्रकार बुजुर्ग अवस्था में भी व्यक्ति को प्रेम सम्मान और स्वास्थ्य संबंधित विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: घर के बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते हैं कशिश, बल्कि अनुभव संस्कार और जीवन ज्ञान का खजाना होते हैं। उनकी उपस्थिति घर को दिशा देती है और परिवार को मजबूती प्रदान करती है।
1: बिल्कुल
0: साथी श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में बदलती जीवन शैली, भागदौड़, तनाव और अकेलेपन के कारण बुजुर्गों का स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। कई बार परिवार में लोग यह समझ नहीं पाते कि बुजुर्गों की सही देखभाल कैसे करें।
1: जी
0: केवल दवाइयाँ देना ही स्वास्थ्य की देखभाल करना नहीं निकाला है, बल्कि उनके शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए श्रोता साथियों, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य कैसे संभालें यह विषय केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना का एक विषय है।
1: बिल्कुल आपका सही कहा, और इस विषय को लेकर आज हम हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो हमारे परिवार की नींव होते हैं।

0: वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उस घर में बुजुर्ग कितने सम्मान और सुख से रह रहे हैं।
1: जी हाँ कोशिश, इसी के साथ अगर बात करें कि बुजुर्ग में होने वाली सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं, तो श्रोता साथियों, बुजुर्ग अवस्था में शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों के कारण कुछ सामान्य बीमारियां भी श्रोता साथियों देखने को मिलती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। श्रोता साथियों, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो जाती है। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही श्रोता साथियों, गलत खान पान और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण बुजुर्गों को शुगर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि घुटनों का दर्द, गठिया, कमर दर्द और भी कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। श्रोता साथियों, कम दिखाई देने वाला मोतियाबिंद सुनने में परेशान कारण बन सकता है, उम्र के साथ बढ़ता रहता है। साथ ही कोशिश हम देखते हैं कि आज कई बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, परिवार का समय न मिलना उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। कुछ बुजुर्गों में श्रोता साथियों याददाश्त कमजोर होने भी लगती है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें ढेर सारे

0: सुरक्षा करती है और वो हम बन सकते हैं यानी कि उनका परिवार। जी हाँ, इसी के साथ अगर बात करें कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य संभालने के क्या उपाय हम अपनाएं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य को पहले जरूरत मानना होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि संतुलित और पौष्टिक भोजन हम उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बुजुर्गों का जो पाचन तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए उन्हें हल्का पौष्टिक और सुपाच्य भोजन आते हैं। भोजन में आप क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ, ताजे फल, दालें, रोटी, दूध और दही,
1: जी
0: दलिया, खिचड़ी, सूखे मेवे भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा सीमित रखें साथियों।
1: जी हाँ,
0: और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उन्हें नहीं खिलानी है, जैसे कि ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना, बहुत मीठा भोजन, जंक फूड से बिल्कुल बुजुर्गों को दूरी।

0: जिसके कारण उनमें कमजोरी बढ़ जाती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल रही है और ये बातें आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: जैसा कि श्रोता साथियों बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर रहे हैं
1: जी।
0: और इससे पहले हम कुछ ऐसे उपाय जान रहे थे जिससे हम बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छे से बनाकर रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने जाना था कि हमें उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना है
1: जी हाँ।
0: साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे उनको दूरी बनानी है और उनके भोजन में हमें क्या क्या शामिल करना है ये भी हम जान पाए थे
1: जी हाँ। कोशिश
0: यही मनीष हम हमारे साथियों को बताना चाहेंगे कि नियमित स्वास्थ्य जाँच कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारियां गंभीर हो जाती हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत जरूरी माना जाता है
1: जी। बिल्कुल खुशी
0: श्रोता साथियों, जैसे कि कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो बुजुर्गों को करवानी चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर की जाँच, शुगर टेस्ट, दांतों की जाँच, हड्डियों की जाँच और हृदय जाँच
1: जी हाँ।
0: तो यदि कोई दवा चल रही है तो उसे समय पर देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जो संक्रमण होता है या फिर जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी अपनी चपेट में नहीं रहती है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है
1: जी। बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि नियमित

0: निद्रा साधन योग और प्राणायाम मानसिक शांति भी देते हैं। इससे हमारा तनाव कम होता है और हमें नींद भी अच्छी आती है।
1: बिल्कुल,
0: श्रद्धा साधनों में मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कई बार कोशिश हम देखते हैं कि बुजुर्ग शारीरिक रूप से तो नहीं बल्कि मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें लगता है कि अब परिवार में उनकी ज़रूरत कम हो गई है, यह भावना उन्हें अंदर से तोड़ने लगती है। तो श्रद्धा साधन इसलिए भी हमें उनसे बातचीत करनी है, उनकी राय हमें देनी है, उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं करने देना है।
1: बिल्कुल,
0: पुरानी यादों को उनकी सुने, बच्चों के साथ समय बिताने का प्रयास करें साथियों, इससे प्रेम और सम्मान भी बढ़ेगा। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं होता, आत्मसम्मान का भी होता है। साथ ही यदि घर के बुजुर्गों को सम्मान मिले कोशिश, तो वे मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहेंगे। आज कोशिश हम देखते हैं कि कई घरों में बुजुर्ग अपेक्षाओं का शिकार हो जा रहे हैं, यह स्थिति बहुत दुखद है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया है, उन्हें बुढ़ापे में सहारा देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, बुजुर्ग जीवन का वह पड़ाव है जहाँ व्यक्ति को सबसे अधिक अपनापन, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल
1: दोस्तों, उनकी सेवा केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमें यह समझना होगा मनीषा कि बुजुर्गों की देखभाल केवल उनके जीवन को लंबा नहीं करती
0: जी,
1: बल्कि उन्हें खुशहाल और सम्मानपूर्ण भी बनाती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को संकल्प लेना चाहिए कि साथियों हम अपने घर के बुजुर्गों को समय भी देंगे, उनका सम्मान भी करेंगे और उनकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे।

जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोताओं से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें। बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

ही हमारे फोन नंबर पर। बिल्कुल, हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आई डी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आई डी है radio@vankhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।

0: दोस्त क्यों देख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी क्या करूँ, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध दही दालें हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात पूरी।
2: यानी गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वाघा देवी द्वारा जन्म प्रसारण।

आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मेरी आपसे बातचीत होगी। दोस्तों आज हम एक ऐसे गुण को लेकर बात करने जा रहे हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन की हर सफलता की नींव होता है और वो है धैर्य। साथियों आज की दुनिया तेज है आप सभी जानते हैं, हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए, जल्दी सब कुछ चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन साथियों जीवन की सच्चाई तो ये है कि जो चीजें जल्दी मिलती है वो अक्सर टिकती नहीं है। धीरे धीरे चलने वाला ही श्रोता साथियों दूर तक जाता है और यही सच्ची बात है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। तो कार्यक्रम में मजा आएगा साथियों क्योंकि गीत संगीत भी कार्यक्रम में रहेंगे और गीत संगीत से मुझे याद आया कि शुरुआत में भी पहले मैं आपको मनोरंजन करवाती हूँ गीत के साथ में। तो साथियों आज भी सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप भी बने रहिएगा आपका अपना रेडियो आपकी अपनी आवाज बाबर रेडियो 90.8 FM पर।

के भोजन जुटाए रिश्वत देना तो खुद बाहर ने सिखाए 99% मार्क्स लाओगे तो फ्री और ना छड़े लिख लिख कर पड़ा अकेले बनाया अभी का गाँव छाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गुण की जो दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन में महत्व बहुत रखता है और वो गुण है धैर्य का गुण। साथियों, देखते हैं कि धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में टूटना नहीं, परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। लेकिन साथियों, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो मुश्किल समय को भी आसान बना देती है। हम देखते हैं साथियों कि जब हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति को समझदारी से देख पाते हैं। हम जल्दबाजी में कभी गलत फैसले नहीं लेते श्रोता साथियों, बल्कि सोच समझ कर आगे बढ़ते जाते हैं। और वो कैसे? क्योंकि हम धैर्य के गुण को अपनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि आज के समय में धैर्य के गुण की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि साथियों आप खुद ही मुझे ये बताइए कि आपने कहीं धैर्य रखने वाला व्यक्ति देखा है? और अगर देखा भी है और गलती से हमें कहीं मिल भी गया तो लोग उसे पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं और उससे उसका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले, हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश सफल हो, हम चाहते हैं साथियों कि कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में न आए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो इंतजार करना नहीं जानते वे सफलता की गहराई को भी कभी नहीं समझ पाते। कई बार श्रोता साथियों, हम सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परिणाम देर से मिलने वाला है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि परिणाम देर से नहीं मिलता, वह श्रोता साथियों सही समय पर मिलता है और उस सही समय का हम इंतजार नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है श्रोता साथियों हमारे लिए, क्योंकि धैर्य जैसा गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए जो कि वर्तमान में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि धैर्य और सफलता का बहुत ही गहरा संबंध होता है। वो कैसे? तो साथियों, हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य छिपा होता है, ऐसा हमने सुना भी है और देखा भी है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता श्रोता साथियों, उसके पीछे उसके कई वर्षों की मेहनत, ढेर सारे संघर्ष और कई दिनों का धैर्य होता है साथियों। और आपने सुना भी होगा कि बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर साथियों किसान बीज बोने के अगले दिन ही फल की उम्मीद करे तो क्या कभी वह सफल हो सकता है? नहीं हो सकता ना श्रोता साथियों, क्योंकि बीज बोने के बाद भी तो पौधा बनता है और पौधे के बाद पेड़ बनता है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में सफलता चाहिए श्रोता साथियों, तो आपको धैर्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है और हम जान पा रहे हैं कि आज के समय में धैर्य जैसे गुण की हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन श्रोता साथियों हम प्रयास करेंगे, हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कह सकते हैं कि धैर्य का गुण हमें सब में देखने को मिलेगा और हम अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। तो श्रोता साथियों, बातें आगे कार्यक्रम में और होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बढ़ते हैं साथियों फिर से हमारे विषय की ओर। जैसा कि हम धैर्य के गुण को लेकर बातचीत कर रहे थे और गीत से पहले हमने जाना था कि आज के समय में धैर्यपूर्ण व्यक्ति हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और अगर कहीं मिल भी गए तो लोग उन्हें ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं जिससे उनका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि धैर्य रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कह सकते हैं कि हम सफलता के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, वर्तमान में सफल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता एक ऐसी कह सकते हैं कि चीज़ है जिसे अगर हमने नहीं पाया या फिर हमें वो नहीं मिली तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन ही बेकार है। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि सफलता पाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, और धैर्य के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो साथियों, अब जानते हैं कि धैर्य हमें क्या सिखाता है। साथियों, धैर्य हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे कि हमें शांत रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और मजबूत बनना। हमें सही निर्णय लेने में भी धैर्य मदद करता है साथियों, और हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी देता है। क्योंकि श्रोता साथियों, किसी ने सही कहा है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं।

खिलाफ होती है तब भी हमारी जिंदगी की परीक्षा होती है। और जब लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं श्रोता साथियों, तब भी धैर्य के गुण की परीक्षा होती है। ऐसे समय में दोस्तों मन करता है हार मान लेने का और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन साथियों वही सही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। और धैर्य अगर हमारे पास है तो हमें किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं साथियों, क्योंकि दोस्तों अगर धैर्य है तो कठिन समय भी आएगा और जो कठिन समय है वो हमें धैर्य के साथ मजबूत बनाता है। अगर हम श्रोता साथियों उस समय टिक जाते हैं तो हम खुद को और मजबूत बना लेते हैं और यही हमारे धैर्य की पहचान है श्रोता साथियों। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि धैर्य की परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी है और जो इस परीक्षा में सफल हो गया श्रोता साथियों तो वो तो आप समझ लीजिए कि जीवन रूपी समंदर में नैया पार हो गई। तो श्रोता साथियों कहने का मतलब यही है कि आपको अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा गुण है श्रोता साथियों जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अब श्रोता साथियों आप ये सोच रहे होंगे कि आप धैर्य की बात तो कर रहे हैं लेकिन धैर्य को हम अपने जीवन में विकसित कैसे करें। बिल्कुल, वो भी मैं अगर आपको बताऊं साथियों तो धैर्य एक दिन में कभी नहीं आता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसे श्रोता साथियों धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। वो कैसे? तो खुद पर भरोसा रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें साथियों, जल्दबाजी करने से आपको बिल्कुल बचना है और हर स्थिति को समझने की कोशिश करनी है और फिर ये प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि साथियों धैर्य जैसे गुण अभ्यास से आते हैं और अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए श्रोता साथियों जब हम खुद को समय देते हैं तो हम खुद के लिए बेहतर बन रहे होते हैं और जब हम बेहतर बन जाते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साथियों याद रखें कि धैर्य वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है साथियों। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए श्रोता साथियों कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबा इंतजार होता है, इसलिए धैर्य रखिए, सही समय जरूर आएगा। तो श्रोता साथियों जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने ये जाना कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, ये हमें मजबूत बनाता है, हमें सही दिशा देता है और हमें सफलता तक भी पहुंचाता है। तो श्रोता साथियों आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब धैर्य और मेहनत साथ होते हैं तो सफलता निश्चित होती है श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए साथियों, धैर्य जैसे गुण को मत खोइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वावड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो पॉकेट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत का विषय रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, प्रकृति ने इस धरती को अनगिनत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और समुद्र से सजाया है। पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में जीवन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2: बिल्कुल,
1: यही विविधता हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाती है।
2: जी हाँ,
1: और मानव जीवन को सुरक्षित रखती है। हम देखते हैं मनीषा कि जीवों और वनस्पतियों की इस विविधता को जैव विविधता कहा जाता है।
2: बिल्कुल,
1: जैव विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की नींव भी है। और श्रोता साथियों, जैसा कि हर वर्ष यानी कि आज ही के दिन 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
2: बिल्कुल,
1: इसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति के महत्व और जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
2: जी हाँ,
1: आज जिस तेजी से जंगल कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, वो पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए जैव विविधता दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देती है।
2: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
2: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं पटेल सर, जो कि वाग्धारा संस्था में विगत 16 साल से संगठन लीड के पद पर कार्यरत है। तो आज हम सर से ही जानना चाहेंगे कि आखिर जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, साथ ही इसमें युवा और बच्चों की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले सर नमस्ते।
2: नमस्ते
0: सर, आपका स्वागत है हमारे वाग रेडियो परिवार में और कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि सर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि आखिर हमें ये जैव विविधता दिवस मनाना क्यों पड़ रहा है और इसकी जरूरत क्या है।
2: बिल्कुल, ये एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
2: जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता संरक्षण को महत्व और उसको उजागर करना एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको स्थापित कैसे किया जाए इसके ऊपर है। और हर वर्ष उसकी अलग अलग थीम होती है।
0: जी हाँ।
2: तो अपन 2026 की यदि बात करें तो इसकी जो थीम है, इस थीम की अपन बात करें तो स्थानीय रूप से कार्यवाही वैश्विक प्रभाव। स्थानीय रूप से अपन क्या क्या कार्यवाही कर सकते हैं और उसका वैश्विक प्रभाव क्या हो सकता है, इसके ऊपर खास करके इस थीम अभी बनाई गई है। तो यदि हम सोचे कि अपने गांव, समुदाय, स्थानीय जल स्तर और प्रकृति जैव विविधता के संरक्षण के लिए छोटे छोटे प्रयास करें तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व में पड़ सकता है। तो जैव विविधता केवल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है।
0: हाँ।
2: बल्कि यह हमारे जीवन, खेती, भोजन, जल, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, तो ये सब चीजों को अपन देखते हैं तब जाके इसका प्रभाव, और खास करके इसको ये आदिवासी क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो पारंपरिक तरीके से जो अपन जल, जंगल, जमीन, जानवर और बीज की बात करते हैं, है ना, और स्थानीय खाद्य प्रणाली जैसे जैव विविधता की महत्वपूर्ण धरोहर है। ये सब चीजों को अपन यदि ध्यान में रखेंगे तो ये अपन जो वास्तविक जैव विविधता की बात करें तो ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर चीज आ जाती है। आजकल अपन देख रहे हैं कि जैव विविधता के नाम की चीज शहरों में तो खत्म ही हो गई है। ये आजकल फास्ट फूड की बात आ जाती है, शाम को देखते हैं तो लारियों में भीड़ जमा हो जाती है।
0: हाँ।
2: प्लास्टिक मार्केटों में दिखाई देती है। तो ये जैव विविधता और खास करके ये जो अपन जैव विविधता के साथ साथ ये क्यों ये सब चीजें लाई जा रही है कि जो इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिक तंत्र है जो बदलता जा रहा है, मौसम बदलता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन इसका हर 22 मई को ये विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सर।
0: तो जैसा कि सर आप जल, जमीन, जंगल, बीच की बात कर रहे थे, तो आप हमारे श्रोता साथियों को भी बताइए कि आखिर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जल भी समाप्त होने वाला है। आज हम देखते हैं कि जल संकट भी हमारे सामने कई बार आ जाता है, गर्मी बढ़ रही है, तो जल को भी कैसे बचा सकते हैं, हमारे जंगलों को कैसे बचाए, बीज का संरक्षण कैसे करें, ये सारी बातें भी आप हमारे श्रोता साथियों से।
2: बिल्कुल सही बात है। यदि अपन जल की बात करें तो जल अभी क्या है कि बारिश आती है, एक साथ आ जाती है।
0: बिल्कुल।
2: और एक साथ बारिश आती है तो बारिश का पानी जैसे ढलान होता है निकल जाता है।
0: जी हाँ।
2: साथ में मिट्टी और खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों को लेके जाता है।
0: बिल्कुल।
2: तो जल को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
2: जल को बचाने के लिए जैसे आजकल सरकारी योजनाएं मेड़बंदी है, चेक डैम है, एनिकेट है, खेत तलाई है, फार्म पॉन्ड है, इस प्रकार की गांव के अंदर योजना लाके अपन को जल को बचाना चाहिए। और बहुत सारे गांव के अंदर एनिकेट टूटे हुए हैं, तालाब टूट रहे हैं, खेत की मेड़ टूट रही है, तो अभी ये समय है बारिश के पहले ये जितने भी टूटे हुए एनिकेट है, मेड़ है, उसको रिपेयरिंग किया जाए और जहां नए जो आयाम है बनाने का वहां बनाया जाए, उसके लिए सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। नरेगा के माध्यम से भी होता है काम, तो उसके माध्यम से भी अपन को जल स्रोत बचाने के लिए बहुत सारी योजना है, उसको लागू किया जाए। तो जल स्रोत को बचाना बहुत जरूरी है। यदि जल बचेगा तो पोषक मिट्टी बचेगी और मिट्टी बचेगी तो पोषक तत्व बचेगा और मिट्टी और पोषक तत्व बचेगा तो खाद्य सामग्री में अपन अच्छी तरह से उत्पादन ले सकते हैं और उसकी जैव विविधता को बरकरार रख सकते हैं। दूसरी चीज जैसे आपने मुझे बताई कि भी जल के साथ साथ बीज को भी कैसे बचाया जाए और बीज को बचाना क्यों जरूरी है। बीज को बचाना इसीलिए जरूरी है कि आज जो बीज कंपनियां, मैं सीधी बात करूंगा कि कंपनियों ने बीज को खत्म कर दिया, कहीं कहीं यदि अपन देखे तो ग्रामीण स्तर पर आदिवासी समुदाय स्तर पर अपने पारंपरिक बीज को संभाल के रखा है, लेकिन ये भी देखे तो जो कंपनी आजकल पैकेट वाला बीज गांवों तक पहुंच गया है और पैकेट के अंदर जो फोटो देख के किसान और जो अपना समुदाय है वो प्रभावित हो जाता है कि भी ऐसा उत्पादन होगा, लेकिन अंदर वास्तविकता अलग ही निकलती है। तो किसान को आखिर में मेहनत करने के बाद नुकसान हो जाता है। लेकिन यदि किसान ने अपना खेत का बीज संभाल के रखा है और अच्छा बीज छान के, किसान को पता है कि भी कौन से पौधे से मुझे अच्छी आमदनी, कितनी ज्यादा फलियां निकल रही है या एक मक्की के पेड़ में कितना बड़ा भुट्टा निकला है, तो ये सब चीज किसान अपने खेत में देख रहा है और वो छांट के बड़े बड़े बीज अलग लेके यदि उसको संग्रह करेगा तो बहुत अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और उसको मार्केट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उसकी जो मेहनत है वो
0: रंग लाएगी
2: मतलब फैल नहीं जाएगी और उत्पादन उसका बड़ा रहेगा। तो बीज खुद का होना चाहिए, स्वयं का जांचा हुआ होना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में यदि मैं उत्तराखंड से बीज लाऊंगा हो सकता है मेरे क्लाइमेट में यहाँ पर सूट न करे, तो अपने स्थानीय बीज जितना होगा इतना यहाँ पर क्लाइमेट को भी सूट होगा और इसमें उत्पादन भी होगा, जर्मिनेशन होगा और अच्छी तरह से उत्पादन हो सकता है।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीज का रखना किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जितना बीज की विविधता अपने घर में होगी उतनी ही अपन जैव विविधता को बरकरार रखेंगे और इतने ही अपन भोजन के अंदर जैव विविधता आएगी। तो ये महत्वपूर्ण बीज का महत्वपूर्ण इसीलिए है।
0: बिल्कुल सर, जैसे कि हम भोजन में विविधता आएगी, हम तिरंगे भोजन की तो बात
2: करते ही हैं, पोषक तत्व की बात करते हैं
0: तो अगर हम इस तरह से बीज का संरक्षण करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे भी लाभ होगा और साथ ही हमारी जो कृषि है, हमारी जो भूमि वो बंजर हो जाती है, उस भूमि को बंजर होने से हम बचा सकते हैं।
2: बिल्कुल, बंजर भूमि की आपने बात करी तो मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि जैव विविधता के दिन जैसे अपन रासायनिक आजकल पेस्टिसाइड हो गया, DAP यूरिया आजकल बहुत प्रमाण में जो किसान डाल रहे हैं तो वो भूमि को बंजर कर रहे हैं, वो भूमि को एकदम अनुपजाऊ जिसको बोलते हैं ना कि यदि जितना यूरिया ज्यादा डालेंगे उत्पादन ज्यादा आएगा, वो बिल्कुल गलत है। आज अपन देख रहे हैं कि मुझे पता है कि 10-15 साल पहले जितना गेहूं में उत्पादन होता था यूरिया DAP डाल के, आज उत्पादन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है तो ये चीज और मिट्टी को नुकसान कर रहा है।
0: जी जी।
2: तो यहाँ पर यदि जैव विविधता की बात करें और अपन क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर रासायनिक को कम करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड को बंद करना पड़ेगा और अपने जैविक जो चीज है जैसे अपन वर्मी कंपोस्ट की बात करें, कंपोस्टिंग की बात करें, उगड़ा की बात करें, जीवामृत की बात करें, ऐसी चीज का प्रयोग खेत के अंदर करना पड़ेगा और इससे अपना जो उत्पादन बढ़ेगा, साथ में अपन जो भोजन करेंगे वो रसायन मुक्त होगा जिससे अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और प्रकृति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए महत्व

0: चीज है कि अपन जैविक की ओर जाए और यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बंद कर दे।
1: बिल्कुल,
0: पेस्टिसाइड के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, अपने प्रकृति ने बहुत दिया है, नीम की पत्ती दी है, दस परणी गाढ़ा सब जानते हैं अपन रेडियो के माध्यम से इसका प्रसारण बहुत अच्छा करते हैं। तो ये दस परणी गाढ़ा है, निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, गौमूत्र का अर्क है, ये सब चीज अपन यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से कीट का प्रकोप नहीं होता है। तो इसके लिए अपन किसान भाइयों को बताएं कि भी जैव विविधता के लिए अपन जैविक खेती अपनाएंगे तो भी काफी अच्छा रह सकता है।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि सर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बातें भी बता रहे हैं, तो और बीच बीच में हमारे श्रोता साथियों को हम मनोरंजन भी करवाते हैं, तो अभी हम एक मनोरंजन करवाने के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे सर।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागुड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी विश्व जैव विविधता दिवस को लेकर, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे बीच में वाग्धारा संस्था के सचिव श्रीमान जय जोशी जी जुड़े हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और सर नमस्ते।
1: नमस्ते जागृति जी, आपको बहुत सारी जैव विविधता दिवस की, विश्व जैव विविधता दिवस की शुभकामनाएं। वाग्धारा रेडियो के प्रत्येक श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं
0: जी। तो जैसा कि सर आज हमारी बातचीत भी विश्व जैव विविधता दिवस को लेकर चल रही है, तो आप हमारे श्रोता साथियों को क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो शुभकामनाएं
0: जी,
1: और उसके साथ आग्रह करना चाहूंगा कि विविधता क्या है उसे पहचानने, उसे संभालने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प ले
0: बिल्कुल
1: प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि अगर हम पर्यावरण की विविधता को नहीं बचाएंगे, जैव विविधता को नहीं बचाएंगे, तो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों की वैचारिक विविधता को भी खत्म कर देंगे
0: जी हाँ।
1: और जिस संस्कृति, जिस समाज में वैचारिक विविधता समाप्त हो जाती है वो क्षय के करीब जाती है।
0: बिल्कुल सर।
1: आज अगर हम आने वाली पीढ़ियों में से कभी किसी से चर्चा करते हैं तो संघर्ष होता है कि वो किस प्रकार से अपनी विविधता को समझते, स्थानीय विविधता को कैसे मैपिंग करते हैं, कैसे पहचान पाते हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये संकल्प हमारे लिए जरूरी है कि हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विविधता को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।
0: बिल्कुल सर। यही सर, पटेल सर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो पटेल सर से भी हम जानना चाहेंगे। और जैसा कि सर हमारी बातें चल रही थी, हमने बात की थी बीज को लेकर बात की थी, और हमने जल को लेकर बात की थी, और हमारी बातें जंगल को लेकर रह गई थी, तो जंगल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, अपन अभी जैव विविधता की बात करते हैं तो जंगल को बचाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सर।
2: क्योंकि जंगल में बहुत सारी विविधता होती है, औषधि देखो तो जंगल में मिलती है, यदि अपन इमारती लकड़ी देखो तो जंगल में मिलती है, पशु के लिए चारा देखो तो जंगल में मिलता है। तो यदि जंगल बचेगा तो अपन जैव विविधता को बचाए रख सकते हैं। हर परिवार की पूर्ति जंगल से ही होती है। तो जंगल में अपन पहले अपन देखते थे पारंपरिक चीज के भी, जब कोई बीमार हो जाता था तो औषधीय जंगल से लेके ही वो ठीक होता था। और जब उसकी घर बनाना था, अपना बेटा अलग होता था, तो जंगल से ही लकड़ी लाके वो करता था। तो हर चीज को बचाने के लिए, पशु की खाने की पूर्ति भी जंगल से ही होती थी, तो जंगल को बचाना जरूरी है। आज अपन देख रहे हैं कि भी कितने रोड बन रहे हैं और कितना मतलब जंगल कट रहा है, जंगल के अंदर खेती करने लग गए तो वहां जंगल कट रहा है, तो जंगल बचाना बहुत जरूरी है।
1: और इसमें जो विशेष रूप से पटेल जी, धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं जैव विविधता दिवस की।
2: धन्यवाद।
1: और आपने जंगल के एक आयाम को कहा, पर हमें ये समझना होगा हम जैव विविधता, जैव किसको समझते हैं, तो वो सजीवता आज की पीढ़ियों में, या हम वो सजीवता जो होती है उसको हम महसूस ही नहीं कर पाते कि किस प्रकार से। हर जंगल की शुरुआत उस बीज से होती है, हर जंगल को पोषण वो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला जीव, माइक्रोब्स, जो कभी हमें सजीव आंखों से नहीं दिखता, जो हमें आंखों से नहीं दिखता, वो सजीवता करती है। हर जंगल को पोषण वो जल करता है, हर जंगल को पोषण जल में पाए जाने वाले वो जीव करते हैं जो कभी हमें दिखते नहीं है, चाहे वो परजीवी भी हो। तो उस विविधता को किस प्रकार से हम पहचानते हैं वो महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: आपने जो प्रश्न किया जागृति वो बहुत महत्वपूर्ण था, जिस प्रकार से पटेल जी ने बताया कि जंगल की विविधता हमारे लिए जरूरी है, उसका अलग अलग हमारे जीवन में प्रभाव और जीवन के अंदर किस प्रकार से वो हमें सहयोग करते हैं, जीने में मदद करते हैं, चाहे इमारती लकड़ी, भोजन, पोषण, पोषाहार जो भी हो, जिसे आप लोग अनकल्टिवेटेड फूड, स्वतः उगने वाला, पर स्वतः उगने वाला जंगल भी किसी नहीं दिखने वाले जीव की देन है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें उस जीव की संरक्षण की जब हम बात करेंगे तो कुछ संरक्षण ऐसे होते हैं जो अहिंसक जीवन से आते हैं, जो वाग्धारा के स्वराज की बात है, वो अहिंसक शैली जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हम उस सजीवता को नहीं बचा पाएंगे। कई पक्षी जंगल बचाने में मदद करते हैं
0: जी।
1: वो कई बीजों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कई चिड़ियाएं परागकणों का संचार करती हैं, मधुमक्खियां, कई प्रकार के जीवों का एक अपने आप में महत्व है। तो हम उसे किस प्रकार से पहचानते हैं ये हमें महत्वपूर्ण है। तो हमें हर घटक को पहचानना होगा इस विविधता के।
0: जी बिल्कुल, तो
2: बिल्कुल सही बताया सर ने कि पक्षी का महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन पक्षी को आज अपन देखते हैं तो जो पेस्टिसाइड ने वो यूज करने से पक्षियों का धीरे धीरे नाश हो रहा है, और पक्षियों का महत्वपूर्ण रोल था जंगल को बचाने के लिए और उसकी विविधता। वहाँ जंगल में कौन बीज डालता है, जैसे सूक्ष्म जीव है जो बीज है वो पक्षियों के माध्यम से ही तो उसकी विविधता बढ़ती थी और जंगल को बचाए रखते थे। लेकिन पक्षियाँ धीरे धीरे अपन देखते हैं कि पक्षी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उसकी वजह से ही विविधता, जंगल की विविधता खत्म होती,
1: जंगल भी इसीलिए खत्म हो रहे हैं,
2: जंगल इसीलिए खत्म हो रहे। बिल्कुल सही बताया, जंगल इसीलिए खत्म हो रहे। तो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं अपन को देखना होगा कि पक्षी कैसे बचेंगे।
0: बिल्कुल सर,
2: पक्षी बचेंगे तो जंगल बचेंगे
0: जी, जी।
2: और जंगल बचेंगे तो पोषण बचेगा,
1: हाँ
2: पोषण भी बचेगा, पक्षी भी बचेगा, अपना स्वास्थ्य भी बचेगा, और हर जगह पर विविधता वहीं अपन को देखने को मिल रही है।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ये तो जल जंगल जमीन के बारे में हमने बात की, और यही हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैव विविधता स्थानीय जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
1: जैव विविधता जो मैंने आग्रह किया था कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहेंगे, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, तो हमें इस विविधता को बचाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: और जो परिस्थिति की चक्र है, जैसे पटेल जी ने शुरुआत की बातों में कहा था कि परिस्थिति की चक्र को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो परिस्थिति अस्वस्थ और अव्यवस्थित हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: तो विविधता ही उस पूरे चक्र को बचा सकती है
0: जी।
1: जिस प्रकार से पानी के अंदर सारे घटक होते हैं, परजीवी, माइक्रोब्स, जंगल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, वो सजीवता जैव विविधता के साथ ही बची हुई रह सकती है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो अगर हम पीढ़ियों को बचाना चाह रहे हैं तो पीढ़ियों को बचाने के लिए विविधता बचाना हमें बहुत आवश्यक है। और पीढ़ियों को बचाने में योगदान करता है हमारा भोजन, हमारा पोषण, हमारी ऑक्सीजन, हमारी पानी, और मैंने जो शुरुआत में बात की थी हमारा आनंद
0: जी।
1: अगर आज की पीढ़ियों को आप पूछेंगे आपके आसपास तितली कितने कलर की है, तो वो शायद नहीं पहचान पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और जैव विविधता की प्रारंभिक निशानी है हमारी कितनी प्रकार की तितलियां हमारे आसपास हमारे तंत्र में है, अगर हम वो नहीं जानते तो हम विविधता को क्या जान पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: बिल्कुल सर ने जैसे बताया जैव विविधता अपन को जैसे स्थानीय जीवन से जो जोड़ने की बात आप कर रहे हो, तो जंगल और उसकी आजीविका के साथ और खास करके अपनी पारंपरिक जो भोजन है उसके साथ अपन जैव विविधता को अपन जोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि पारंपरिक भोजन खत्म होता जा रहा है
0: जी सर।
2: और खास करके जो मैंने बताया था
1: डाइवर्सिटी खत्म,
2: डाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो गई
0: जी सर।
2: जो जो शाम होते अपन फास्ट फूड की बात करते हैं,
0: बिल्कुल सर,
2: ये अभी गांवों में बचा हुआ है विविधता। और वही मैंने शुरुआत में बोला कि जितनी जैव विविधता खेती के अंदर होगी इतनी ही फूड में आएगी, भोजन में आएगी, और वही पोषक तत्व निकलते हैं
0: जी सर।
2: तो अपन को खाद्य सामग्री के अंदर अपन को विविधता बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों को बताना चाह रहे हैं, तो सर आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
1: तो वैसे संदेश जागृति जी मैंने शुरुआत में ही दिया था
0: संकल्प
1: का, परंतु फिर से मैं कहना चाहूँगा कि क्या हम ये चर्चा जो अभी वागड़ रेडियो के माध्यम से हो रही है
0: जी,
1: ये एक घंटे की या आधे घंटे की चर्चा है, क्या हम इस विविधता की चर्चा नियमित अपने परिवार में, अपने पीढ़ियों के साथ, हमारे वयस्कों के साथ, मित्रों में करते हैं, और अगर नहीं करते तो हमें इस चर्चा को करना होगा, विविधता को पहचानना होगा। और अगर आप बहुत गहराई से सोचेंगे और जैविक जीवन क्या है, तो जैविक हमारे आसपास आज से 25 साल 10-10 साल के अंतराल पर अगर बांटेंगे कि 10 साल पहले हमारे आसपास सजीव वस्तुएं कितनी थी, आज कितनी है, उससे 10 साल पहले कितनी थी, उससे 10 साल पहले कितनी थी, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में तप सजीवता जीवटता बहुत अधिक थी, बहुत गहरी थी, और आप सजीवता से जीवटता से बहुत समृद्ध थे। और आज का जीवन जिस प्रकार से जी रहे हैं, अगर हम इसी तरीके से जीते रहे तो आने वाले सालों में वो जीवटता समाप्त हो जाएगी। और जब आपकी सजीवता समाप्त होती है तो आप जड़ता की ओर जाते हैं, और जड़ता की ओर जाते हैं तो वैचारिक मृत्यु होती है, और किसी संस्कृति की वैचारिक मृत्यु उसका क्षय का कारण बनती है। तो जैव विविधता हमारी जीवटता को, हमारी सजीवता को, हमारे संस्कृति को बचाने का एकमात्र साधन है। तो इसे अधिक से अधिक समझें, महसूस करें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं। चर्चा ही चिंतन की ओर ले जाती है, और चिंतन चरित्र का निर्माण करती है, और वो हमारी आदत बनती है। तो इस विविधता को हमें हमारी आदत में लाना होगा, पहचानना, बचाना और पहुंचाना।
0: जी बिल्कुल। तो जैसा कि सर आपने बहुत ही अच्छा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, उसके लिए भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद आप सभी को, पुनः पुनः वागड़ रेडियो के श्रोताओं को जैव विविधता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: तो श्रोता साथियों, जैसा कि हमारे बीच में आज वाग्धारा सचिव श्रीमान जय जोशी जी जुड़े हुए थे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ के माध्यम से, और हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर। जैसा कि कार्यक्रम के बीच बीच में हम आपको मनोरंजन करवाते हैं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बनाई।

Mi mamá.

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि हमारी बातें चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर, जैसा कि वाग्धारा सचिव श्रीमान जय जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ में हमारे साथ पटेल सर भी जुड़े हुए हैं। तो पटेल सर, जैसा कि हम जैव विविधता दिवस को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें क्या समाधान हो सकते हैं? साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें बच्चे और युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अपन ने जैव विविधता के ऊपर जय जी ने अपन ने बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन सिर्फ समस्या ही नहीं, समाधान भी कुछ अपन को इसके अंदर खोजना पड़ेगा
0: जी सर।
1: क्योंकि यदि समाधान की अपन बात करें तो जैसे अपनी बात हुई है, जंगल की बात हुई है ना, तो समाधान के अंदर एक तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। पशु पक्षी तो मदद करते ही है, लेकिन अपन को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ज्यादा जो विलुप्त होते जा रहे हैं पेड़ पौधे, अपन को पता है टिमरू जैसे, जामुन जैसे जो विलुप्त होते जा रहे पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और खास करके जो बीज की अपनी बात हुई थी
0: जी सर,
1: तो स्थानीय बीज को बचाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल जी।
1: यदि स्थानीय बीज को नहीं बचाया तो फिर वो स्थानीय बीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज अपन को पता है कि भी वर्षों पहले की जो मक्का, अपन को साठी मक्का, पोहेटा मक्का की अपन बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी मिलेट्स की बात करते हैं, तो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। यदि स्थानीय बीज को बचाएंगे और तो भी अपनी जैव विविधता खाद्य सामग्री में आ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो स्थानीय बीज बहुत महत्वपूर्ण, हर इलाके में जहाँ भी है वो स्थानीय बीज का बचाना बहुत जरूरी है, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, और उसको जितना हो सके इतना व्यापक स्तर पर उसका विस्तार हो, एक दूसरे के देने की बात है कि वो भी बढ़ाएंगे, किसी को अपन देंगे तो वो भी अपना बीज बढ़ा सकता है, तो वो बीज का बढ़ाना बहुत जरूरी है। और साथ में जैसे पेड़ पौधे अपन ने बात की, तो पेड़ पौधों के साथ जल संरक्षण, जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
0: बिल्कुल।
1: जल संरक्षण को बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए अपन ने आगे बहुत अच्छी बात कर दी है। तो जल संरक्षण को यदि बचाएंगे तो उसका समाधान बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: और जो चीज है कि रासायनिक खेती को कम करें।
0: जी जी।
1: जब तक रासायनिक खेती बढ़ती जाएगी तो
0: ये कोई समाधान
1: समाधान है ही नहीं, जैव विविधता अपन ज्यादा नहीं ला पाएंगे
0: जी सर।
1: यदि रासायनिक खेती अपन ने चालू रखी तो अपन को प्राकृतिक खेती की ओर आना होगा, अपन को ऑर्गेनिक खेती की ओर आना होगा। उसके लिए प्राकृतिक जो भी जैव उर्वरक है या जैव पेस्टिसाइड है, तो ये सब चीज का उपयोग करके अपन को इसका समाधान करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सर।
1: और खास करके जो जीव जंतुओं की रक्षा करना, जंगल के जीव जंतु है
0: उनकी
1: रक्षा बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी है।
1: यदि जीव जंतुओं की रक्षा नहीं की तो समाधान मुश्किल है। जीव जंतु ही है जो जैव विविधता को बचाए रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो महत्वपूर्ण चीज समाधान के अंदर जो ये चार पांच पॉइंट है, इसके ऊपर यदि अपन ने ध्यान दिया तो अपन इसका जैव विविधता को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल। कह सकते हैं कि हम एक दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाने से हम जैव विविधता को नहीं बचा सकते हैं। इसकी जागरूकता हमें हर हमेशा होनी चाहिए, समय समय पर हमारे युवा बच्चे, हमारे जितने भी सरकार है या अधिकारी है, वो भी इन सब चीजों के बारे में हमारे लोगों को जागरूक करेंगे तो ही हम जैव विविधता को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, आपने बताया कि युवाओं और बच्चों की क्या भूमिका है। आज के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और बच्चे भी साथ में बहुत अच्छी भूमिका जैव विविधता बचाने में रख सकते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे कि जैसे स्कूल स्तर पर पौधरोपण है, स्कूल स्तर पर आजकल जैव विविधता की बात करनी चाहिए स्कूलों में। जो पारंपरिक बीज है उसकी प्रदर्शनी लगानी चाहिए आज के दिन, तो बच्चों को पता चले कि ये पुराना जो बीज है वो कैसा होता है, रागी कैसी होती है, कोदरा कैसा होता है।
0: जी बिल्कुल। हम आज के बच्चों को पूछेंगे तो उन्हें रागी
1: उनको पता ही नहीं है। तो स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं उसको ये सब जानकारी जरूरी है
0: जी सर।
1: और पौधरोपण, पौधों की जब पहचान जरूरी है। जामुन खाते हैं, जामुन का पौधा कैसा होता पता नहीं है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये सब चीज उनको जरूरी है
0: जी।
1: साथ में जैसे पक्षियों और जीवों की रक्षा कैसे करना,
0: बिल्कुल सर,
1: ये भी युवा खास करके युवा और बच्चों को पता होना चाहिए। तो खास करके युवा की बात करें तो युवाओं को भी ये सब चीजों का ज्ञान होगा तो युवा ये जैव विविधता को बचा सकते हैं। और स्कूल के अंदर अलग अलग कार्यक्रम करके ये अपन इसका बहुत अच्छी तरह से समाधान इसका हो सकता है।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रही विश्व जैव विविधता दिवस को लेकर, हमने बहुत सारी बातें हमारे श्रोता साथियों से साझा करी, यही आप अंत में हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं इस वागड़ रेडियो के माध्यम से श्रोता साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जैव विविधता केवल प्रकृति नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, खेती, स्वास्थ्य और भविष्य की पहचान है।
0: बिल्कुल
1: पहचान है। यदि हम प्रकृति को बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित होगा।
0: जी हाँ।
1: और धरती मतलब अपन जल जंगल जमीन जानवर बीज की पहचान ही सच्चा विकास और स्वराज है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो सभी साथी इस चीज की रक्षा करेंगे और जैव विविधता बचाएंगे
0: जी।
1: तो सभी किसान साथी सभी समुदाय को मैं आग्रह करूंगा कि जैव विविधता को बचाने के लिए आज ये कर रखेंगे जो अपने बातें हुई है उस बातों को ध्यान में रख के होंगे बचाएंगे। ये रेडियो के माध्यम से मेरा संदेश है।
0: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका अपना कीमती समय दिया और हमें श्रोता साथियों को इसके बारे में बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वागड़ रेडियो का आपका सभी का।
0: जी बिल्कुल धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद।
0: तो जैसा कि श्रोता साथियों आज हमारे बीच में पटेल सर जुड़े हुए थे और उन्होंने विश्व जैव विविधता दिवस को लेकर बहुत सारी बातें बताई कि क्यों मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या थी, साथ ही हमने जल जंगल जमीन के बारे में बात की, युवा और बच्चों की क्या भूमिका हो सकती है, मनीषा ये भी हमारे श्रोता साथियों को बताया
2: जी।
0: तो बातें तो बहुत सारी हो चुकी है, समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि आज हमारे बीच में श्रीमान जय जोशी जी और पटेल सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में बताया, अंत में आपसे हम यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जैव विविधता पृथ्वी का अनमोल खजाना है। इसके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनीषा
1: जी, हाँ,
0: आज आवश्यकता इस बात की कि हम प्रकृति को केवल संसाधन न समझे बल्कि अपना साथी माने।
1: जी हाँ,
0: यदि पेड़ जंगल नदियां और जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। जैव विविधता दिवस हमें ये बताता है, ये संदेश देता है मनीषा, कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे श्रोताओं, जैसे कि पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, प्लास्टिक कम करना होगा, जीव जंतुओं के प्रति दया रखनी होगी और यही कदम भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर और संतुलित पृथ्वी देने के लिए आज से ही हमें जागरूक होना होगा। कहा भी गया है कि धरती माँ की यही पुकार है कि जीव विविधता रखो बरकरार, पेड़ पौधे और जीव बचाओ, सुंदर भविष्य स्वयं बनाओ।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता

0: साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों, हम आपको हमारा पता बताना चाहते हैं। लिख लीजिए आप हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

यही तो शुरुआत है, पता है। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव आगे बढ़ेगा। हो गए न कोई गरीबी रोके न कोई खाला। शिक्षा का किस बदलेगा हर एक दावा मेरा। हेलो स्कूल जाए अपना भी अपना पूरा करना। याद रखिए कलम चुका हर मुश्किल पर हावी। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। हो गए जैसे सब पूरा बनेगा सारे देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना आएगा। शिक्षा हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वाग्रा संस्था द्वारा जनता।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है दोस्तों 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी है साथी हमारे बीच जिला बागपत से ही। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोले दोस्तों ओढ़नी ओढ़ के नाचू। इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं आसर अली खान, मोहम्मद नाच, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी और भी दोस्तों सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। महाराष्ट्र से सतरम धाड़े बकरी वाल्मीकि, नीजा जी, सफरिला जी और भी दोस्तों जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। बोरखेड़ा से विनोद मुणक, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पावर, दिशा कौशल जी और इस गीत की अनुरोध करता है। जिला छत्तीसगढ़ से है बालकरम वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच शिवाजी नगर खड़वा से ही। गीत के बोले दुनिया हसीनों का मेला। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजेश सेन, सुरेखा जी, शुभम जी, अक्षय सेन जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। जिला खरगोना मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समराज, आर्यन बेबी, आरोही, ऐशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों पंटपुर से जाकिर मुलानी, सोम्या, सुभान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों हम चल रहे हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, तो अगली फरमाइश आ चुकी है साथियों हमारे बीच पंटपुर से है। फिल्म का नाम है इतिहास, गीत के बोले दिल की कलम से। इस गीत के साथ दोस्तों जुड़ना चाह रहे प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, जिला भागपत से है जगमोहन श्री प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितिन जी, प्यारी पोती भुवनेश्वरी जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। आर्य नगर कक्का बिलाई से उत्तम सिंह जंगल, मोरसी जंगल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगल, नंदिर जंगल जी। सुकरी कला से अमित जंगल, कुशल जंगल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगल जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच नेपाल नगर मध्य प्रदेश से ही। फिल्म का नाम है ताजमहल, गीत के बोले जो वादा किया वो। साथियों, इस गीत के साथ चुना चार है सुदय शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को, मंजुका टीला से कमल बालोजा, मधु बालोजा, सागर बालोजा और संताना एमपी से उमेश मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों जिला भागपत से अब्दुल्ला संता आबासी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशवाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच सरदाना मेराज से है, फिल्म का नाम है सोल्जर। गीत के बोले साथियों, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे अनिल जैन, जैन साहब, यमन जैन, मुस्कान जैन, मास्टर विजयन जैन जी, और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। खेल बाजार पानीपत से नरेश मोहत्रा नेटू, लक्ष्मण मोहत्रा जी, लाडो कोल मोहत्रा, पापाजी नानक चंद्र मोहत्रा जी, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पेशिका कोल शिका गुट्टी भाविका शिका जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। जोधपुर राजस्थान से रमी चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी करवी जी, और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मचिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे साथियों। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जी, और भी साथी सुनना चाह रही हैं दोस्तों। भिवानी से कृष्णा मेरा, कोमल मेरा, कृष्णा मेरा, कपिल मेरा, कुणाल मेरा जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच रायगढ़ से ही। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोले दोस्तों दिलबर दिलबर। और इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चना ताई गोड़ा ने, हीरामन शेडे, प्रतिभा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू जी। और इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से पीए नेवाकर, निर्मला नेवाकर, विशाल नेवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार जी, आशीष मोहेंकर जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच बक्सर बिहार से ही। फिल्म का नाम है मोरा, गीत के बोले तो चीज़ बड़ी है मस्त। साथियों इस गीत के साथ चुना चाह रहे सरहुजीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश अंसारी जी, डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी जी, गोला बाजार बक्सर से सदानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य जी, सहारनपुर बक्सर से राज एडीसी अंसारी और अस्मा खातून अंसारी जी, और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। श्रीरामपुर से श्री अशोक डी अशोक कुमार, अविका जीविका जी, सोनू कुमार, अर्चना कुमारी जी, पुनावाला से अजय कुमार, करिश्मा, अविका और अर्चना कुमार जी, और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। कल्याण मुंबई से किशोर कुमार जी, सुजाता जी, प्रतीक जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। कुरवाली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी जी, राहुल कुमार जी, नितिन कुमार जी, सोनम वर्मा जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच छूरे छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से ही। फिल्म का नाम है प्यारा सावन, गीत के बोले तेरा साथ हो तो मुझे क्या। दोस्तों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मनु शनु बब्बर, मनु

गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कुमल परी कृतिका रेशमी डांगी जी पुराना लाभ डुंगरावर से वली उल्ला अंसारी असमानाज अंसारी और शबनम बनोज जी जो रोड बक्सर से है राज एडी से अंसारी और फातिमा नाज अंसारी जी दिल्ली से डॉक्टर सोनम अंसारी डॉक्टर अदीबा अंसारी जी और उस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सूरज राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनू मोहनी ऋतिक बलविंदर सिंह जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं साथियों। गज डुंडवारा से मोहम्मद कली अंसारी मोहम्मद बेगम अंसारी मोहम्मद यान अंसारी मोहम्मद उस्मान अंसारी मोहम्मद यान अंसारी मोहम्मद कमराय अंसारी जी और भी साथी जुड़ रहे हैं। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन मीना मस्किन आशीषा चैतन्य मस्किन मेगा मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित खुराना किशोर रिधान खुराना जी और भी साथी जुड़ रहे हैं दोस्तों। हमारे इसी गीत के साथ में उत्तर प्रदेश से नरसिंह शेख नाजा नासिर शेख जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कमल क्रांति मरावी प्रमिला जी नेहा जी प्रमिला जी तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है फकीरा। गीत की बोल है तोता मैने की कहानी पुरानी हो गई। इस गीत की फरमाइश करता है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वासी महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इस गीत की अनुरोध करता है गजुडवारा से याशिम हाशमी, नवाजा बेगम, तौसीफ तोइनूर जी, कलीम अंसारी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से विकास भंसोड़े, रेखा जी, अदिति जी और वैभव जी सिंधी। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं आकाश और प्रिया जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गुजरात से रमेश राठौड़, मंजुना राठौड़, विशाल और दिशा जी। इस गीत की अनुरोध करता है जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाक रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। गीत के बोल हैं दिल तो पागल है। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुमिता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, प्रशांत सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, रही मेराब जहां जी। इस गीत के अनुरोध करता है नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी जी थांदी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नो वड़तकर जी। जाकोत राजस्थान से जुड़ना चाह रहे शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनम यादव, बेबी सिया यादव। जलाना शहर से जुड़ रही है सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकता जी यादव और संगीता जी यादव। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है दिल तो पागल है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं आके तेरी बाहों में। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, अशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नूजी गोस्वामी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेकजी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुरा से जोन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पर्ल डिकिस्टो, विले डिकिस्टो। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, चीनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत की अनुरोध करता है कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। पत्रोड से जुड़ रहे हैं विजय अंबटेकर, सुनीता अंबटेकर, अक्षय अंबटेकर, राधिका जी अंबटेकर। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं समित मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी और अदीप हसन जी। पटेल नगर मानो से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुड्डू झंझोरिया और गुड्डू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आके तेरी बाहों में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गजरू द्वारा से। फिल्म का नाम है खलनायक। गीत के बोल ये पालकी में होते सवार चली रहे। इस गीत की फरमाइश करते हैं शमशेर कमर रही, साईं फातिमा, अजदान खान, फैजाद खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, दुर्गा कोहली ने हंसी सी, राजू मिटानी, बबीता मिटानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बुलडाणा से दीपाली राम धाड़ी, स्वराज जी। इस गीत का अनुरोध करता है हनुमानगढ़ से प्रेम सिंह, सुखवीर जी, लखवीर जी, कृष्णा श्रीमती सिंधु, प्रवीण जी, शीतल जी, नवीन जी और रंगीला जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गेटी, संगीता गेटी, साक्षी गेटी, जयश्री मिलेती, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिटू, पीपी कुटलेश जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ये पालकी में होके सवार चली रही। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं तुलसी मस्किन, वीडा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधान जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजू द्वारा गणेशपुर से, फिरासत हुसैन, अल कमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अल्फेज। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं संभाजीनगर से अनिल कुमार, वैशाली जी, वैष्णवी, गायत्री जी और प्रगेश जी। इस गीत की अनुरोध करता है बिहार से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, अनामिका जी शर्मा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम जी शाक्य। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, गीत के बोल हैं मैंने पूछा चांद से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफार जी, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे, झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। तेलीवाला से जुड़ना चाह रहे हैं निशार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नजियाबाद से राधिका जाटव, प्रभा राजी जी जाटव। दिल्ली से जुड़ रहे हैं मनोहन चूप, मीठी जी और खट्टी जी। डुमराव से जुड़ना चाह रही है वलीउल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातिमा खातून जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, जीवन खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

0: नहीं नहीं नहीं मैंने
1: आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है काजगर सी। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल है तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत की फरमाइश करता है एस असलम सैफी, जुबनीशा बेगम, अकरम सैफी, सदाम सैफी, सोनी जी सैफी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं बबलू शाहू, जामुन देवी, रंजू, लल्ला, पूजा और बेबी आराध्या जी शाहू। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, सृष्टि बन्नी।

और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं, पुणे से पंकज वाड़ोदी, आर्या प्रियंका, बीटी जी वाड़ोदी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामणि शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ जी गोड़ाने। दिल्ली से जुड़ रहे हैं डॉक्टर बेबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी। गुजरात से जुड़ना चाह रहे हैं अजीत कुटरिया जी। अंबाला से जुड़ना चाह रहे हैं संदीप और राजकेश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज वली, सोनम वली, शबनम वली। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज अंसारी, शिल्पी राज, उमा राज। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं वसीम अंसारी, बेबी अंसारी, यामिनी जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव, जानवी यादव। उमरखेड़ से जुड़ना चाह रहे हैं भाई रजाक खान, सबाना, जावेद जी खान। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और दोस्तों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

जय गुरु भैन बोनो, आप सब मेहरबान स्वागत करो हो हमारी आज नी हासिल सभा में। आप सब हम रिया हो आप सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते। मैं हूँ आपने हाथे आपने बोन अंजलि पारेश्वर ने आज वार शुक्रवार ने तारीख 22 मई 2026 नो दाड़ो है। भाई बोनो में देख ही रहा हूँ कि अपने स्टूडियो ने खड़ी में हाजिर ना पांच बाकी के हैं। तब आपने शुरुआत करा हाजिरी सभा में पुनः प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। भाई बोनो आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ताह की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की। इना में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्ति में गीता ने अनस क्रम में अगड़ी बढ़ंगा अमारी ने तमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने आड़ी आ कार्यक्रम।

0: आज के सुविचार।
1: सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, हितर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। मनीषा, आज हमारे युवा साथियों से हम बात करने जा रहे हैं कि सद्भावना के विचारों से हमारी ही चेतना कैसे शुद्ध होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके विचार, भावनाएं, व्यवहार और चेतना ही उसके व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान बनाते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, संसार में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी सकारात्मक विचार की शक्ति रही है।
0: जी हाँ,
1: यदि मनुष्य के मन में प्रेम, दया, करुणा और साथ ही सहानुभूति के साथ साथ सद्भावना के विचार हो तो उसका जीवन स्वयं प्रकाश में बन जाता है।
0: बिल्कुल,
1: वहीं यदि मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, क्रोध और अहंकार जैसी भावनाएं बढ़ जाएं तो व्यक्ति भीतर से अशांत और कमजोर होने लगता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सद्भावना के विचारों से ही हमारी चेतना शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार बनता है।
1: बिल्कुल,
0: और वैसा ही उसका जीवन भी बन जाता है। साथियों, यदि मन में अच्छे विचार हो, दूसरों के प्रति प्रेम हो, दया हो, करुणा हो और सम्मान की भावना हो साथियों, तो जीवन में शांति और सुख बना रहता है। वहीं यदि कशिश मन में ईर्ष्या, घृणा, क्रोध और द्वेष भरे हो, तो श्रोता साथियों, व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि सद्भावना के विचार केवल दूसरों का ही भला नहीं करते, बल्कि सबसे पहले हमारी अपनी चेतनाओं को शुद्ध करते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: श्रोता साथियों, सद्भावना का अर्थ ही सभी के प्रति अच्छा सोचने की भावना। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारा मन शांत रहता है, व्यवहार मधुर होता है और समाज में प्रेम तथा भाईचारा बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में कशिश, हम देखते हैं कि जब लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे हैं, तब सद्भावना और भी आवश्यक पहले से कहीं अधिक हो जाती है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि आज के हमारे युवा साथी आधुनिकता, प्रतिस्पर्धा और तेज भागती दुनिया के बीच अपने भीतर की शांति को खोते जा रहे हैं।
0: जी हाँ
1: मनीषा, सोशल मीडिया, तुलना, सफलता की अंधी दौड़ और रिश्तों में बढ़ती दूरी ने मनुष्यों के मन को अस्थिर बना दिया है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे समय में सद्भावना केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है साथियों, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि सद्भावना का मतलब है दूसरों के लिए शुभ सोचना, अच्छे भाव रखना, बिना स्वार्थ के किसी के सुख की कामना करना। और जब मनुष्य दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तब वह सबसे पहले उसका मन निर्मल बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा जाता है दोस्तों कि सद्भावना के विचारों से सबसे अधिक लाभ स्वयं हमारी चेतना को होता है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि सद्भावना केवल मीठे शब्द बोलना नहीं, बल्कि मन में दूसरों के लिए अच्छा सोचने की भावना है।
1: बिल्कुल,
0: यह श्रोता साथियों वह शक्ति है जो मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की ओर ले जाती है। सद्भावना में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सम्मान और क्षमा की भावना शामिल होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब श्रोता साथियों हम किसी की सफलता को देखकर खुश होते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तब हम श्रोता साथियों सद्भावना का परिचय देते हैं।
1: जी हाँ,
0: सद्भावनाओं का संबंध केवल समाज से ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा और चेतना से भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: अच्छे विचार मन को स्वच्छ और शांत बनाते हैं। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि चेतना मनुष्य की आंतरिक शक्ति है जो उसे सोचने, समझने और सही गलत में निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: बिल्कुल,
0: यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार का केंद्र होती है। यदि चेतना शुद्ध होगी श्रोता साथियों, तो व्यक्ति का जीवन संतुलित और सुखद बनता है।
1: बिल्कुल,
0: मनुष्य के विचार ही उसकी चेतना को प्रभावित करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: नकारात्मक विचार चेतना को दूषित कर देते हैं, जबकि श्रोता साथियों सकारात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार चेतना को पवित्र और उज्ज्वल बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है।
1: जी हाँ, आपने सही कहा मनीषा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है।
0: जी हाँ,
1: ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है
1: जी हाँ।
0: और जान रहे हैं कि किस प्रकार से सद्भावना के विचारों से हमारी चेतना शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, अगर आपको बताएं तो सद्भावना केवल दूसरों के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये स्वयं के भीतर की शुद्धता का भी एक माध्यम बनती है।
1: जी हाँ कशिश,
0: जब हम किसी की सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं मनीषा, और किसी दुखी व्यक्ति के लिए सहानुभूति रखते हैं, साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं या फिर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ये ऊर्जा मन को हल्का, शांत और प्रसन्न बनाती है। साथ ही इसके विपरीत देखें तो जब हम दूसरों से जलते हैं, बदले की भावना रखते हैं या फिर किसी के प्रति नफरत पालते हैं, तब सबसे पहले हमारा अपना मन ही विषाक्त होता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं तो मन में क्रोध और द्वेष भी कम हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे मानसिक शांति मिलती है। शांत मन ही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है साथियों। साथी कशिश, हम देखते हैं कि ईर्ष्या, घृणा और बदले की भावना मनुष्य को भीतर से कमजोर बनाती है, जैसा कि आपने बताया था। सद्भावना इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करती है साथियों, और मन में सकारात्मकता बनाती है। साथी श्रोता साथी, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे विचार रखता है वह दूसरों से डरता नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और न ही किसी का बुरा चाहता है कशिश। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में आगे बढ़ता है। साथी श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सद्भावना से परिवार, मित्रों और समाज के साथ संबंध भी मधुर बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अच्छे संबंध व्यक्ति को मानसिक रूप से सहारा देते हैं साथियों। दूसरों से तुलना करना और ईर्ष्या रखना श्रोता साथियों तनाव पैदा कर देता है। सद्भावना व्यक्ति को संतोष, खुशी देता है। साथी कशिश, हम कह सकते हैं कि इससे हमारा तनाव भी कम होता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों, तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को महत्व दिया गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसका मतलब होता है दोस्तों कि पूरा संसार एक परिवार है। ये विचार केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि सद्भावना का सबसे बड़ा उदाहरण भी है।
1: जी हाँ
0: मनीषा, हमारे संतों, महापुरुषों और विचारकों ने हमेशा प्रेम और मानवता का ही संदेश दिया है।
1: बिल्कुल,
0: वहीं महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा और प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति बताया है।
1: जी हाँ,
0: स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को मानव सेवा और सकारात्मक सोच का मार्ग दिखाया है। वहीं गौतम बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का आधार बताया है। इन सभी श्रोता साथियों महापुरुषों की शिक्षाओं का मूल यही है कि यदि मनुष्य अपने भीतर सद्भावना को विकसित कर ले तो उसका जीवन और समाज दोनों सुंदर बन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: हम देख सकते हैं कि हमारे युवा साथियों से हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि युवावस्था जो है वो जीवन का वह समय है जब व्यक्ति के विचार तेजी से बनते हैं।
1: जी हाँ
0: साथियों, यही वह उम्र होती है जब मन में ऊर्जा भी अधिक होती है और दिशाहीनता का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि इस अवस्था में हमारी युवाओं के भीतर नकारात्मक सोच घर कर जाए मनीषा
1: जी,
0: तो उनका जीवन क्रोध और असंतोष से भर सकता है। लेकिन यदि वे सद्भावना, सेवा और सकारात्मकता को अपना ले तो वे न केवल स्वयं सफल बनेंगे बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे पाएंगे।
1: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा आधुनिक तकनीकी और तेज प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहा है। वह सफलता तो चाहता है श्रोता साथियों, लेकिन कई बार मानसिक शांति को खो देता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में सद्भावना उसके जीवन को सही दिशा दे सकती है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सद्भावना रखने वाला युवा हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है।
0: जी हाँ।
1: वह समस्याओं से घबराता नहीं है बल्कि समाधान खोजता है। श्रोता साथियों, आज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, तुलना और नफरत फैलाने वाली बातें तेजी से बढ़ रही हैं। सद्भावना युवाओं को इन नकारात्मक प्रभाव से बचाती है। साथ ही श्रोता साथियों, जो युवा दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं साथियों, वही अच्छा नेता बनता है।
0: जी हाँ
1: साथी कशिश, हम देखते हैं कि अच्छे विचार रखने वाले युवाओं को समाज में सम्मान और विश्वास मिलता है। लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सद्भावना व्यक्ति को केवल अपने बारे में नहीं साथियों, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल,
1: इससे श्रोता साथियों जीवन में संतुलन बना रहता है।
0: जी हाँ आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारा अपमान करते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमें समझते नहीं या फिर हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: ऐसी परिस्थितियों में मन में क्रोध आना स्वाभाविक है साथियों। लेकिन यदि हम हर समय नफरत और बदले की भावनाओं में जीते रहेंगे तो सबसे अधिक नुकसान हमारा और अपना ही होगा।
1: जी हाँ
0: साथियों, सद्भावना हमें क्षमा करना सिखाती है, क्योंकि क्षमा करने का मतलब गलत को सही मानना नहीं होता, बल्कि अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त करना होता है। हम कह सकते हैं मनीषा कि मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके विचारों में छिपा होता है।
1: बिल्कुल,
0: सद्भावना श्रोता साथियों एक ऐसे सुगंधित फूल की तरह है जिसकी खुशबू पहले स्वयं के जीवन को महकाती है और फिर आसपास के वातावरण को भी सुंदर बना देती है। यदि हम अपने मन में प्रेम, करुणा और सहयोग के भाव रखेंगे तो हमारी चेतना दोस्तों धीरे धीरे निर्मल होने लगेगी। हम अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्न बनेंगे। ऐसे में आज के युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि नफरत, ईर्ष्या और तुलना कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। वास्तविक आनंद दूसरों के अच्छे सोचने और सकारात्मक जीवन जीने में है। मनीषा, सद्भावना मनुष्य को केवल अच्छा इंसान ही नहीं बनाती बल्कि उसे मानसिक रूप से मजबूत और आत्मिक रूप से समृद्ध भी बनाती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा

0: radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक कब्जू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ले, आ खवानू आल। अणी वातनू ध्यान राखो, आपणू जीवन सुरक्षित राखो।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। श्रोता साथियों, हमारा खास कार्यक्रम जहां हम जीवन की छोटी छोटी आदतों को बड़ी सीख में बदलते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह इतना सामान्य है कि साथियों हम उसे रोज देखते हैं। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो हमारी पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है और वह है स्वच्छता की आदत। क्या साथियों आपने कभी सोचा है कि गंदगी सिर्फ एक गंदी जगह नहीं बनाती बल्कि वह बीमारी, परेशानी और लापरवाही का कारण भी बनती है। और क्या आपने यह भी सोचा है कि एक छोटा सा बदलाव जैसे कि कचरा सही जगह डालना, हाथ धोना, पानी साफ करना कैसे हमारे पूरे समाज को बदल सकता है। बचपन ही श्रोता साथियों वह समय ही जब आदतें बनती हैं। अगर बच्चे स्वच्छता सीख लेते हैं तो वे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को स्वच्छ बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, इस विषय पर आगे भी हमारी बातें होंगी लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही दिया है कि आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की आदत हमारे बच्चों में हम कैसे विकसित करें। साथियों, आज की कहानी है दो बच्चियों की, वो है काजल और पायल की। एक है जो सफाई को बोझ समझती है और दूसरी है जो सफाई को अपनी जिम्मेदारी और जीवन का हिस्सा मानती है। इन दोनों की बातचीत हमें बताएगी गंदगी कैसे बीमारी बनती है, सफाई कैसे सुरक्षा बनती है और एक बच्चा कैसे पूरे समाज को बदल सकता है। तो आइए साथियों सुनते हैं स्वच्छता की आदत, स्वच्छ समाज की पहचान।
1: पायल, अरे ओ पायल, ये क्या तू हर समय सफाई में लगी रहती है? मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जहाँ खाती हूँ वहीं कचरा छोड़ देती हूँ। आखिर घर में कोई ना कोई तो साफ कर ही देगा ना।
2: काजल, यही तो सोच बड़ी गलती करती है। अगर हम खुद अपनी जगह साफ नहीं रखेंगे तो कोई और क्यों रखेगा? सफाई सिर्फ कोई काम थोड़ी होती है, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना।
1: लेकिन पायल, इतनी सी गंदगी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा?
2: फर्क पड़ता है काजल, छोटी छोटी गंदगी मिलकर ही बड़ी समस्या बन जाती है और वही बीमारी की शुरुआत होती है।
1: अच्छा, मैंने ये चिप्स का पैकेट यहीं फेंक दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैदान तो इतना बड़ा है।
2: काजल, सोचो जरा, अगर हर बच्चा यही सोचकर एक पैकेट फेंकेगा तो मैदान कचरे से भर जाएगा ना। साफ जगह को गंदा बनाने में समय नहीं लगता, लेकिन गंदगी हटाने में बहुत मेहनत लगती है।
1: अरे पायल, तू तो छोड़ ही दे, क्योंकि तू तो हर बात में कुछ ना कुछ समझाना शुरू करती रहती है। क्या तू हर बात में समझाती रहती है?
2: काजल, अगर मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो तुम लापरवाह बनती जाओगी, क्योंकि समझ बहुत जरूरी है। आज की लापरवाही कल की बीमारी बन जाती है काजल। अरे यार, ये काजल कहाँ रह गई है? आज तो ये खेलने भी नहीं आई। जाकर देखती हूँ क्या हुआ है उसे। काजल, अरे ओ काजल।
1: हाँ पायल, क्या हुआ?
2: अरे तुम आज खेलने ही नहीं आई तो मैंने सोचा क्या हुआ है, जरा पता कर कराती हूँ।
1: अरे पायल, क्या बताऊँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है।
2: क्यों, क्या हो गया तुम्हें?
1: मुझे पेट दर्द है और बुखार भी आ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि ये सब मुझे गंदगी और गंदे खाने की वजह से हुआ है।
2: देखा काजल, मैं उस दिन तुम्हें समझा रही थी तब तुमने मुझे ये कहा कि तुम हमेशा मुझे समझाती रहती हो। अब पता चला कि गंदगी सिर्फ बाहर ही नहीं रहती, वह हमारे शरीर को भी बीमार बनाकर छोड़ देती है। गंदे हाथ, गंदा पानी, गंदा खाना सब मिलकर हमें बीमार कर देते हैं।
1: उस दिन तुमने सही कहा था। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। अब मुझे तुमसे ये जानना है कि क्या सिर्फ सफाई से ही सब ठीक हो जाएगा? क्या अगर आसपास सफाई रहेगी तो कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा क्या?
2: हाँ काजल, सफाई हर चीज में जरूरी है। खाना बनाते समय, पानी पीते समय, हाथ धोते समय, अगर इनमें सफाई नहीं होगी तो बीमारी जरूर आएगी।
1: हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अब मैं भी बदलना चाहती हूँ। मैं अपने घर और आसपास सफाई रखूंगी और दूसरों को भी इस बारे में समझाऊंगी।
2: अब समझी तुम, जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा समाज बदल जाता है।
1: बिल्कुल, और अब तो मैं बच्चों को भी ये बताऊंगी कि कचरा इधर उधर मत फेंको, हाथ धो और पानी को भी साफ रखो।
2: और यही आदत हमें स्वस्थ और जिम्मेदार बनाती है काजल।
1: बिल्कुल, आज मैं समझ गई कि सफाई कोई छोटा काम नहीं है बल्कि जीवन का सबसे जरूरी काम है।
2: और हर बच्चा जब ये समझ जाएगा तब समाज भी साफ और स्वस्थ बन जाएगा। कहते हैं ना काजल, साफ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, खुशियों से हम भर जाएंगे, छोटी आदत अपनाएंगे जीवन को सुंदर बनाएंगे।
1: बिल्कुल पायल, मैंने सोचा है कि सिर्फ खुद साफ रहना काफी नहीं है। अगर बाकी बच्चे गंदगी फैलाते रहेंगे तो हमारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम स्कूल में एक सफाई अभियान शुरू करें। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है?
2: विचार तो तुम्हारा काजल बहुत अच्छा है। अगर हम सब मिलकर सफाई पर ध्यान देंगे तो पूरा स्कूल बदल सकता है। हमें बच्चों को समझाना होगा कि सफाई कोई नियम नहीं होती है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: हाँ, हम इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम पोस्टर बनाएंगे, उनमें नारे लिखेंगे और सबको ये बताएंगे कि गंदगी से क्या क्या नुकसान होता है। शायद तभी लोग हमारी बात को समझ पाएंगे और तभी बदलाव असल में शुरू होगा। चलो पायल, हम वहाँ चलते हैं। वहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं।
2: हाँ चलो चलते हैं।
1: अरे दोस्तों, मेरा नाम काजल है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा इधर आना। दोस्तों देखो, हम सब रोज यहाँ खेलते हैं, पढ़ते भी हैं। अगर हम ही इस जगह को गंदा करेंगे तो हमें ही परेशानी होगी। क्या हम मिलकर इसे साफ नहीं रख सकते?
2: और दोस्तों, अगर हम आज से छोटी छोटी आदतें अपनाएं, जैसे कि कचरे को डस्टबिन में डालें, पानी इधर उधर न गिराएं, तो हमारा स्कूल साफ और सुंदर बन सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही पायल, हमें ये भी याद रखना है कि सफाई सिर्फ सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और साथ ही पायल, हम जैसा कि बात स्कूल की कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्कूल को ही क्यों साफ रखें? क्यों ना हम अपने मोहल्ले में भी इस चीज को लेकर जागरूकता फैलाएं?
2: कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किसी बड़े की मदद चाहिए होगी। हमें कुछ बच्चे भी चाहिए होंगे जो हमारे दोस्त हो और इसके लिए प्रेरित हो। हम घर घर जाकर लोगों को समझा सकते हैं कि गंदगी से बीमारी फैलती है।
1: बिल्कुल।
2: देखो काजल, आज हम दोनों ने मिलकर कितनी सारी चीजें बदल दी हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन बीमार नहीं पड़ती तो तुम भी कभी ये नहीं समझ पाती कि सफाई कितनी जरूरी है। आज देखो, हमने स्कूल और गली मोहल्लों में सब जगह इस चीज के लिए जागरूकता फैला दी है, और सभी लोग कितने खुश हैं। कोई भी बीमार नहीं है, क्योंकि गांव में और स्कूल में और गली मोहल्लों में सब जगह स्वच्छता है।
1: बिल्कुल।
2: और यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा सपना था।
1: हाँ पायल, तुमने बिल्कुल सही कहा, और मुझे आज ये पता चल गया कि मैं कितनी गलत थी, और तुम जो मुझे समझाती थी वो भी सही था बिल्कुल। क्योंकि जहाँ सफाई होती है, वहाँ स्वास्थ्य, खुशी और सम्मान अपने आप ही बस जाते हैं। इसलिए हमें स्वच्छता अपनानी है और बीमारियों को दूर भगाना है।
2: बिल्कुल।
0: साथियों, एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बदलाव और एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, यह हमने आज की इस कहानी में देखा। स्वच्छता सिर्फ एक काम नहीं है साथियों, यह हमारी सोच का आईना है। हम जैसे रहते हैं, हमारा समाज वैसा ही बनता है। अगर हम गंदगी को नजरअंदाज करते रहेंगे तो बीमारियां, लापरवाही और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर हम सफाई को अपनाएंगे तो स्वच्छता, खुशहाली और सम्मान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आज जरूरत है साथियों कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन की सही आदतें भी सिखाएं। खुद साफ रहना, अपने आसपास सफाई रखना और दूसरों को प्रेरित करना। क्योंकि श्रोता साथियों, याद रखिए, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य, सम्मान और सुख अपने आप ही आ जाते हैं। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जीदार। भिंडा तुरिए आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ले, आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
2: मारू नाम गिल्ली है ने मुं मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देख्यो कि मुन्नी घणी रोई रही थी। तो मुं हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है। तो मुं दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पीवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीधु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूध ज पिएगा ने अगर आपणे मुन्नी ने काई भी खवड़ावांगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: અંજલિ બોન ગીત ત્યાંશું પૂરું આણા ગીત બાદ એક વખત ફેરે આપણે ભાઈ બોનોને સ્વાગત કર્યો આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે અંજલિ બોન આપે ગીત થકી પહેલે વિશે વતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હા આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસને લઈને
1: હવે મનીષા બોન આના વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે હાથે જોડી રહે સોહનજી તો સબતે કી પહેલા આપણે હમરી લેણાની હંગરી વાત તે મોરે કર આપણી વાતે
0: હવે
1: સર નમસ્કાર
2: નમસ્કાર
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
2: धन्यवाद
1: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिवस का क्या उद्देश्य है तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि आखिरकार जैव विविधता क्या है
2: सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जैव विविधता है तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव जल स्रोत वन मिट्टी और पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र है वो सारा मिलके और वो जैव विविधता से बना है और जैव विविधता इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जैव विविधता हमारे जीवन के लिए जीवन यापन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी जी बिल्कुल
2: और जैसा कि हम देखते हैं कि जैव विविधता अगर हम उदाहरण के लिए पेड़ पौधों की बात करते हैं अगर हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर एक ही प्रकार का अगर पेड़ होगा तो क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर पाएगा क्या हमें इमारती लकड़ी दे पाएगा क्या हमें सारे फल दे पाएगा क्या हमें हमारे पशुओं को चारा दे पाएगा क्या जो भी चीजें गोंद दे पाएगा जो भी चीजें पेड़ पौधों से मिलती है क्या एक ही प्रकार का जो पेड़ है वो उसको पूर्ण कर पाएगा आवश्यकताओं को तो सीधा सा उत्तर यह है कि नहीं तो नहीं तो हर पौधे का अपना अलग महत्व है
1: बिल्कुल
2: है ना तो अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं अलग अलग प्रकार के जो पौधों की महत्वता है ना तो वो पौधों की विविधता है
1: बिल्कुल
2: तो इसी तरह से जीव हम ले लें धरातल पे है ना तो धरातल पे कुछ जीव है जो मरे हुए जंतु का भक्षण करते हैं वो भी हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए उनका काम करते हैं
1: जी जी।
2: कुछ जीव है पानी को साफ करते हैं कुछ जीव है जो वातावरण को साफ करते हैं ठीक है और वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र में सबका अपना अपना महत्व है
1: बिल्कुल
2: ठीक है तो इसी प्रकार से हम अगर हमारा बीज को ले ले या हमारी फसल को ले ले अगर हम एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो क्या हम दलहन कहाँ से लाएंगे सब्जियां कहाँ से लाएंगे फल कहाँ से लाएंगे सारी चीजें कहाँ से लाएंगे
1: बिल्कुल सर
2: तो इनमें सबका अपना अपना महत्व है इसमें भी हर दाल का अपना महत्व है
1: जी जी
2: है ना हर दाल का स्वाद अलग है ना तो इसीलिए विविधता और सब में विविधता चाहे आपका पेड़ पौधों में ले लो सूक्ष्म जीवों में एक ही प्रकार का अगर जीव अगर धरातल में होगा या एक ही प्रकार का बैक्टीरिया होगा या एक ही प्रकार का वायरस होगा तो वो अपने उससे पूरा जो है ब्रह्मांड नहीं चल सकेगा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र उससे
1: नहीं
2: बैलेंस नहीं होगा पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने के लिए जो है जैव विविधता बहुत ज्यादा जरूरी है इसीलिए सरकार ने 1992 में एक जैव विविधता संधि हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और उसी उपलक्ष में जो है ये जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा हुई 22 मई 2026 को हम विश्व अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो मना रहे हैं और उसकी जो थीम भी रखी है वो ये कि जो स्थानीय धरातल पर जो कार्य है स्थानीय स्तर पर कार्य और उनका वैश्विक स्तर पर प्रभाव इसका मतलब यह है कि हमारे छोटे छोटे कार्य है कि हम हमारे धरातल पे या ग्राम स्तर पे या प्लास स्तर पे हम कैसे जैव विविधता का संरक्षण करें और वो जैव विविधता का संरक्षण है तो वो ही अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वही अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को मैनेज करेंगे अगर धरातल पे अगर मान लो जैव विविधता पे अभी खतरा है और हमको ये गर्व करना चाहिए कि भारत में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा देश माना गया है कि अभी वहां पे जैव विविधता बनी हुई है वहां पे बहुत सारी जैव विविधता वहां कायम है और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो जैव विविधता है हमको उनको संरक्षण करना चाहिए हर चीज का अपना महत्व है हम बहुत सारी चीजें जो है अभी क्या है कि जैसे खेती की बात करें तो मैं बहुत सारे कार्यक्रम में भी बात करता हूँ कि लोग बाजार को देख के खेती कर रहे हैं अपने पोषण को देख के खेती नहीं करते
1: जी जी
2: और अपने पोषण के लिए वो बाजार पे निर्भर होते हैं। अगर हम खुद ही, हम जो किसान हैं, हम दाता हैं धरती के, अगर हम ही, अगर हमारा पोषण ही हमको बाजार से खरीदना पड़े या हमारा खाना ही हमको बाजार से खरीदना पड़े, तो फिर हमको हमारा जो किसान होने का जो है उस पे हमको गर्व नहीं रहेगा, एक तरह से अफसोस होगा कि हम हमारा खुद का खाना भी हम नहीं उगा पा रहे और जबकि हमारे पीछे किसान लगा है। तो इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा और हमारी सारी जो जैव विविधता है हमको बनाए रखनी पड़ेगी, चाहे जल स्रोत है हमारे, हम देखेंगे कि हमारा जो परंपरागत जो जल स्रोत है बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर फूट गया है तो वो फूटा हुआ है, सरकार के भरोसे हमने जो है उसको डाल रखा है, पूछते हैं कि ये जल स्रोत आपका टूटा हुआ है, इसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा ये बात करेंगे कि हमने सरकार को बोल दिया, हमने ग्राम सभा में प्रस्ताव लिखवा दिया, लेकिन वास्तव में वो जल स्रोत है किसका, हमारा स्वयं का, वो काम किसके आएगा, हमारे स्वयं के,
1: जी जी,
2: हमारे पशु उसमें पानी पिएंगे, हमारे बच्चे उसमें स्नान करेंगे, हमारे जो खेतों की उससे सिंचाई होगी और हमारे आसपास के जीव जंतु उसमें, जब आसपास में पानी नहीं होगा तब वहां आके पानी पिएंगे।
1: बिल्कुल सर।
2: तो इस तरह से उनको जिंदा रखना जरूरी है और जब हम इन सब चीजों को, हमारे आसपास के परिस्थिति तंत्र को हम जिंदा रख पाएंगे, उनको खुद को जवाबदारी लेके और उनके ऊपर काम करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो गांव में, हमारे फले में ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम करने का निर्णय करेंगे, चाहे हमको हलमा करना पड़े, चाहे हमको लोगों को समझाने के लिए कुछ कार्यक्रम करना पड़े या लोगों को समझाने के लिए कुछ संदेश देना पड़े या समाज स्तर पर कुछ कार्य करना पड़े, तो ऐसा हमको करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जैव विविधता क्या है और आज जो हम ये दिवस मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं और इस विषय की क्या थीम है, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि स्थानीय स्तर पर कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जाने की जरूरत है जिसके माध्यम से जो जैव विविधता पर संकट गहरा रहा है उसे हम रोक सकते हैं।
2: देखिए, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पेड़ पौधे तेजी से कट रहे हैं,
1: जी जी,
2: जलवायु परिवर्तन का जो हम देख रहे हैं कि इस साल गर्मी का आप प्रकोप झेल ही रहे हो,
1: बिल्कुल
2: ठीक है, प्रदूषण दिनों दिन बढ़ रहा है, रासायनिक खेती हो रही है तो उससे कैंसर जैसी बीमारियां दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है,
1: बिल्कुल।
2: तो इन सबसे निजात पाने का और एक तरह से स्थायी रूप से जो समाधान है वो जैव विविधता, और हमको इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको हमारी जैव विविधता को कायम रखना चाहिए, ठीक है, और इस संकट से बचाव जो है हमको सिर्फ हमारी जैव विविधता ही कर सकती है,
1: बिल्कुल।
2: तो इसी के साथ ही जैसे कि जैव विविधता में हम देखेंगे कि हमारा भोजन, औषधि, जल, हमारा हवा, पानी, ठीक है, ये सारा का सारा और हमारी आजीविका का सीधा संबंध है जैव विविधता से,
1: बिल्कुल।
2: और हम देखेंगे कि पूरा एक तरह से जो पूरा सर्किल है हमारे जीवन का वो जैव विविधता पे ही टिका हुआ है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी जैव विविधता पे टिका हुआ है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता धीरे धीरे कम होती गई तो सीधा सा जो मैंने अभी ये जो प्रभाव गिनाए हैं, जो हम बार बार जलवायु परिवर्तन का इससे ये प्रभाव पड़ रहा है, उससे ये प्रभाव पड़ रहा है, सीधा सा जो है उसको नष्ट भी हम कर रहे हैं, जैव विविधता को खत्म हम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल।
2: और मनुष्य को लालच के प्रभाव से वो धीरे धीरे इस जैव विविधता को कम करने लगा है, तो अभी भी हमारे पास समय है,
1: जी जी,
2: कि हम उसको बचाएं।
1: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण है। यदि हम आज जैव विविधता की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ पर्यावरण मिल सकेगा।
1: बिल्कुल।
2: आइए इस 22 मई को हम संकल्प लें कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, बीज की रक्षा करेंगे तथा प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: ધન્યવાદ
1: ભાઈ બોનુ. જેમ કે આપણે આપણા વ્યાસમાં સોહનજી જોડે તક હતા, એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકાથી બતાડ્યું હે કે જૈવ વિવિધતા શું કહેવાય હે, આનું સંકટ કેમ વધતું જઈ રહ્યું હે, ને સામુદાયિક સ્તર માટે આપણે શું પ્રયાસ કરી શકું. આશા કરો ભાઈ બોનુ કે આ હંગરી વાત આપણે ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટ પડવાનું.
0: હવે
1: તો સૂટ તો પડ, પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટ.
0: હવે અંજલિ બોન, તો ભાઈ બોનો સાંભળો આ ગીત.

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, अपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि पुराने तरीके गलत नहीं, बस भुला दिए गए हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम आधुनिकता को अपनाने की होड़ में इतने आगे बढ़ गए हैं अंजलि, कि पीछे मुड़कर देखना ही भूल गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम मान बैठे हैं कि जो नया है वही सही है और जो पुराना है वो बेकार या पिछड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारे पुराने तरीके, चाहे वो खेती के हो, जीवन शैली के हो या सामाजिक संबंधों के, कभी गलत नहीं थे। वे समय की कसौटी पर खड़े उतरे हुए हैं, अनुभव का सार थे। परंतु अंजलि, आज हम उन्हें भुलाकर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ सुविधा तो है लेकिन संतुलन नहीं है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि अंजलि, गीत से पहले हमारी बातें भी रही थी और विषय भी हमने हमारे श्रोता साथियों को बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं पुराने तरीके गलत नहीं बस भुला दिए गए हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पुराने तरीके की जड़ जो थी वो अनुभव में थी, यानी कि श्रोता साथियों, हमारे पूर्वजों के पास आज की तरह आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके पास जीवन का गहरा अनुभव और समझ थी।
0: बिल्कुल,
1: वे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते थे। उनके हर काम के पीछे कोई न कोई तर्क, विज्ञान और अनुभव छिपा होता था, चाहे वह खेती का तरीका हो, भोजन बनाने का तरीका हो या जीवन जीने का ढंग, सब कुछ संतुलन पर आधारित था। आज हम आधुनिकता के नाम पर उन तरीकों को भूलते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जबकि वही तरीके हमें स्वास्थ्य, संतुलन और सुकून दे सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो तरीके अपनाए थे वे केवल परंपरा नहीं थे, बल्कि उनमें गहरा विज्ञान छिपा हुआ था।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, ये न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता था बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी था।
1: जी जी।
0: आज हम प्लास्टिक और केमिकल वाले बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार हम देखें, पहले लोग प्राकृतिक खेती करते थे, बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों की उगाई गई फसलें शुद्ध और पौष्टिक होती थी। लेकिन आज की आधुनिक खेती ने उत्पादन तो बढ़ाया परंतु जमीन की उर्वरता और हमारी सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाया है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पहले के समय में लोग घर का बना ताजा और पौष्टिक भोजन खाते थे।
0: बिल्कुल,
1: मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, लकड़ी के चूल्हे पर धीमी आंच में भोजन तैयार होता था। इसमें श्रोता साथियों, न केवल स्वाद होता था बल्कि पोषण भी भरपूर होता था।
0: जी हाँ,
1: आज फास्ट फूड, पैकेज फूड ने हमारी जिंदगी में जगह बना ली। नतीजा बीमारियां, मोटापा और कमजोर इम्यूनिटी।
0: बिल्कुल,
1: जबकि पुराने तरीके अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते थे। पहले किसान प्राकृतिक खेती करते थे, गोबर की खाद, जैविक तरीके और मौसम के अनुसार फसल उगाना, ये सब सामान्य बात थी। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता था। लेकिन आज के समय में जागृति जी, हम देखते हैं कि कुछ किसान भाई बहन जल्दी लाभ प्राप्त करने के चक्कर में गलत आदतों में फंस गए हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में फिर से पुराने तरीके की ओर लौटना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है।
0: जी अंजलि, क्योंकि पहले समाज में एकता, सहयोग और आपसी सम्मान की भावना प्रबल थी। संयुक्त परिवार की परंपरा लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती थी।
1: जी जी,
0: हर खुशी और दुख में लोग साथ खड़े रहते थे। लेकिन आज के समय में एकल परिवारों का चलन बढ़ गया, हम देख रहे हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ गई है। पहले लोग अपने पड़ोसियों को परिवार की तरह मानते थे, पर आज हम अपने ही आसपास के लोगों से अनजान रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, ये बदलाव हमें आधुनिक तो बना रहा है, लेकिन अकेलापन और मानसिक तनाव भी बढ़ा रहा है अंजलि।
1: जी जी,
0: पुराने समय में लोग सादा जीवन जीते थे, घर का भोजन, नियमित दिनचर्या और शारीरिक श्रम, ये सब उनके स्वस्थ जीवन के आधार थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं अंजलि कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम फास्ट फूड, देर रात तक जागना और कम शारीरिक गतिविधियों को अपनी आदत बना चुके हैं।
1: जी जी,
0: योग और आयुर्वेद जैसे पुराने तरीके आज फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं श्रोता साथियों कि आधुनिक दवाइयों के साथ साथ प्राकृतिक उपचार भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पहले लोग सरल जीवन जीते थे, कम इच्छाएं, ज्यादा संतोष, दिनचर्या भी नियमित होती थी, नींद पूरी होती थी और मन शांत रहता था। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद आम हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में पुराने तरीके जैसे कि योग, ध्यान और प्रकृति के करीब रहना हमें फिर से मानसिक शांति दे सकता है। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पहले के समय में लोग प्रकृति से जुड़े रहते थे, प्रकृति को पूजते थे, उसका सम्मान करते थे। पेड़ पौधे लगाना, जल स्रोतों की रक्षा करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था।
0: जी हाँ,
1: आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और उसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ रहा है। अगर हम पुराने तरीके को अपनाएं तो हम प्रकृति के साथ संतुलन बना सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, पुराने तरीके गलत नहीं बस भुला दिए गए हैं। बातें निरंतर हमारी बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जागृति जी ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से पहले के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे स्वास्थ्य, पोषण, हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखती थी। अब यही बात करें कि ये तरीके हम क्यों भूल गए हैं, इसके क्या कारण है, तो हम देखते हैं कि आधुनिकता की अंधी दौड़ के कारण हम ये सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। सुविधा की चाह, समय की कमी और परंपराओं को पुराना समझने की सोच, साथियों, इन कारणों से हमने उन तरीकों को पीछे छोड़ दिया जो वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद थे।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये समझना होगा कि न तो हर पुरानी चीज बेकार होती है और न ही हर नई चीज अच्छी। असली समझ यह है कि हम दोनों का संतुलन बनाकर रखें।
1: जी हाँ।
0: जहाँ तकनीक जरूरी है वहाँ उसका उपयोग करें, जहाँ पुराने तरीके बेहतर हैं वहाँ उन्हें अपनाएं और अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को समझें, सिर्फ आधुनिकीकरण में न रहें।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं था, बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना था। गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा जीवन के हर पहलू को छूती थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली अधिकतर अंकों और डिग्री तक सीमित हो गई है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, पुराने समय में बच्चों को नैतिक मूल्य, संस्कार और जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी, जो आज की शिक्षा में कहीं खो गई है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है श्रोताओं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हम अपने पुराने तरीकों को अपनाते हैं अंजलि, तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था अंजलि कि हमें अपने देश के संसाधनों और परंपराओं का सम्मान करना होगा। आज जब हम विदेशी चीजों और तरीकों पर निर्भर होते जा रहे हैं, तब सच्चे स्वराज की भावना कमजोर पड़ती जा रही है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि पुराने तरीके गलत नहीं थे, वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए तरीके थे। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन को सरल, संतुलित और खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है। श्रोता साथियों, जरूरत है कि हम अपने अतीत से सीखें और उसे समझें और अपनी वर्तमान जिंदगी में उसे शामिल करें, क्योंकि असली प्रगति वही है जिसमें हम अपनी जड़ों को न भूलें। अगर हम पुराने तरीकों को फिर से अपनाएंगे तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि समाज और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: जो हमने छोड़ दिया वही शायद हमारी असली ताकत थी। समय हमेशा आगे बढ़ता है जागृति जी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो पीछे छूट गया वो बेकार हो गया।
1: जी हाँ।
0: असल में जीवन एक नदी की तरह है जिसका प्रवाह आगे की ओर होता है, लेकिन उसकी ताकत उसके स्रोत से आती है। पुराने तरीके वही स्रोत हैं जिन्होंने हमारे समाज, संस्कृति और जीवन को मजबूत आधार दिया है।
1: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि कहना गलत होगा कि केवल पुराने तरीके ही सही और नया सब गलत है। श्रोता साथियों, समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन हमें समझना होगा कि बदलाव का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। हमें पुराने और नए दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: जहाँ आधुनिक तकनीक हमें सुविधा देती है, वहीं पुराने तरीके हमें स्थिरता और संतुलन सिखाते हैं।
0: जी जी।
1: आज के युवा समाज का भविष्य है। अगर वे अपने इतिहास, परंपराओं और पुराने तरीकों को समझेंगे तो वे एक मजबूत और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं।
0: जी।
1: युवाओं को चाहिए अंजलि कि वे आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपने मूल्यों को न भूलें। उन्हें अपने बुजुर्गों से सीखना होगा और उनके अनुभवों का सम्मान करना होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, आज हम जिस आधुनिकता पर गर्व करते हैं वह भी कहीं न कहीं उन्हीं पुराने अनुभवों और परंपराओं की नींव पर खड़ी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हमने चमक दमक उसकी जड़ों को देखना बंद कर दिया। हम परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया को भूल गए हैं। हम सुविधा चाहते हैं लेकिन संतुलन खो बैठे हैं। श्रोता साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम पूरी तरह अतीत में लौट जाएं, बल्कि इस बात की है कि हम अपनी सोच को संतुलित बनाएं।
1: बिल्कुल।
0: हमने ये समझना होगा कि असली समझदारी नया या पुराना चुनने में नहीं है, बल्कि सही क्या है पहचानने में है।
1: जी हाँ।
0: जब हम बिना पूर्वाग्रह के अपने तरीकों को समझेंगे श्रोता साथियों, तो हम पाएंगे कि उनमें जीवन को सरल, टिकाऊ और खुशहाल बनाने की गहरी शक्ति छिपी हुई थी।
1: जी हाँ।
0: आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें केवल आधुनिक साधन ही नहीं बल्कि वह समझ भी दें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी भविष्य भी स्थिर और सुरक्षित होगा।
1: जी हाँ अंजलि, जब हम अपने अतीत को भूल जाते हैं तो हम केवल परंपराएं नहीं खोते बल्कि अपनी पहचान भी खोने लगते हैं। श्रोताओं, पुराने तरीके हमारे समाज की नींव है, वे अनुभव है, संघर्ष और सादगी का ऐसा खजाना है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज जरूरत इस बात की नहीं है अंजलि कि हम केवल आधुनिक बने, बल्कि इस बात की कि हम समझदार बने, जो ये जान सके कि क्या अपनाना है और क्या बचा कर रखना है। श्रोताओं, सच्चा स्वराज तभी आएगा जब हम अपने निर्णय खुद लेंगे।
0: बिल्कुल।
1: जब हम अंधी नकल छोड़कर अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचानेंगे, जब हम सुविधाओं से ज्यादा संतुलन को महत्व देंगे।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम मेय से आगे बढ़कर हम की सोच अपनाएंगे, याद रखिए श्रोताओं, अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ दे तो वो कभी फल फूल नहीं सकता। वैसे ही अंजलि, अगर समाज अपने पुराने मूल्यों को भूल जाए तो वो कभी सच्ची प्रगति नहीं कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए समय आ गया है कि हम रुक कर सोचे कि हम केवल आगे बढ़ रहे हैं या सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए श्रोताओं, हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ आधुनिकता भी हो और परंपराएं भी हो, जहाँ विकास भी हो और संस्कार भी हो, और जहाँ हर व्यक्ति गर्व से कह सके कि मैं आधुनिक भी हूँ और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी। यही मेरा सच्चा स्वराज है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि पुराने तरीके गलत नहीं, बस हम उन्हें भूल गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब हम आत्मनिर्भर बने, अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें।
1: जी,
0: आज का समय हमें पुकार रहा है कि क्या हम अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे या आधुनिकता की अंधी दौड़ में खुद को खो देंगे। फैसला हमारे हाथ में है। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मारू नाम गिल्ली है ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मुँ हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है। तो मुँ दूरी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने की दू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने काहे भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नू दूधस पीवू है।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों, हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो आपसे एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं मनीषा कि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से लू की समस्या को लेकर बातचीत करेंगे।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं साथियों कि वर्तमान में लू की समस्या को काफी आम माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है श्रोता साथियों कि हम इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे जाकर हमें ये पता चलता है कि हम बहुत गंभीर समस्या से पीड़ित हैं।
0: जी हाँ,
1: तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानेंगे कि लू की समस्या क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, साथ ही गर्मियों में इस समस्या से बचने के लिए हम क्या देखभाल के उपाय अपना सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में लू से बचाव कैसे करें।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, अधिक तापमान और कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आता है। भारत जैसे देश में गर्मियों के दिनों में तापमान कई स्थानों पर बहुत अधिक बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में श्रोता साथियों, लू लगना एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या बन जाती है। लू केवल एक साधारण बीमारी नहीं है साथियों, बल्कि समय पर ध्यान न देने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकती है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: विशेष रूप से कशिश हम देखते हैं कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, किसानों, मजदूरों तथा खुले वातावरण में काम करने वाले लोगों को इसका अधिक खतरा रहता है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में कशिश हम देखते हैं कि बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन भी लू जैसी समस्याओं को अधिक बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए लोगों में जागरूकता फैलाना हमारे लिए साथियों बहुत आवश्यक है, ताकि वे सही जानकारी के माध्यम से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन के सभी कार्य सही प्रकार से कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, गर्मियों में लू से बचाव के उपायों की जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें कि लू की समस्या आखिर होती क्या है, तो दोस्तों जब शरीर लंबे समय तक बहुत ज्यादा गर्मी या फिर तेज धूप के संपर्क में रहता है
0: जी,
1: तब शरीर का तापमान सामान्य स्तर से बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है मनीषा।
0: बिल्कुल,
1: और शरीर पसीने के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों
0: हाँ,
1: जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर कह सकते हैं कि बहुत अधिक गर्मी में अगर हम रहते हैं तो शरीर की यह प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है।
0: जी हाँ कशिश,
1: ऐसी स्थिति में मनीषा व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है, शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और इसी स्थिति को हम लू की समस्या कहते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: दोस्तों, दोपहर के समय चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के कारण लू लग जाती है। और खासकर हम कह सकते हैं कि लू लगने के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा धूप में रहना या फिर शरीर में पानी की कमी का हो जाना।
0: जी हाँ,
1: खाली पेट घर से निकलना, अधिक मेहनत वाला कार्य करना, तंग और मोटे कपड़े पहनना, साथ ही बंद या फिर गर्म कमरों में रहना।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, सभी के कारण हम कह सकते हैं लू लगने की समस्या हमें ज्यादा होती है।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ कशिश हम देखते हैं कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं। लंबे समय तक धूप में रहने से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि गर्मी में अधिक पसीना निकलता है। यदि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया जाए साथियों, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: खाली पेट बाहर जाने से शरीर में कमजोरी हो जाती है कशिश, और लू की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि किसान, मजदूर, रिक्शा चालक और निर्माण कार्य करने वाले लोग अधिक गर्मी में लगातार काम करते रहते हैं, जिनके कारण उन्हें लू लग जाती है। इस तरीके से कशिश हम कह सकते हैं कि लू लगने के कई कारण हो सकते हैं। यही अगर हम लक्षणों की बात करें तो श्रोता साथियों, यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि तेज बुखार आने लगता है, सर दर्द जैसी समस्या होने लगती है, चक्कर आने लगता है और साथ ही श्रोता साथियों उल्टी या मतली होती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि यदि इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं मनीषा, और जान रहे हैं कि लू की समस्या क्या होती है और लक्षणों को हम जान पाए हैं।
0: बिल्कुल,
1: आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, लू की समस्या और इससे बचाव के उपायों को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें जान रहे हैं
1: जी।
0: और गीत से पहले हम लू की समस्या होने के कारण और लक्षणों की पहचान कर पाए थे।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर साथियों बात करें कि जब हमें लू की समस्या हो जाती है तो बचाव के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं।
1: जी हाँ
0: मनीषा, हम देखते हैं कि गर्मी में थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है। यदि हमारे श्रोता साथी सही उपाय अपनाएंगे तो लू से आसानी से बचा जा सकता है। दोस्तों
1: जी हाँ कशिश,
0: जैसे कि आपको अधिक मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि जैसा कि हमने गीत से पहले हमारे साथियों को बताया था कि लू लगने की समस्या का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी भी होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पानी पीना है
1: जी,
0: क्योंकि गर्मी में शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है। इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमें चाहिए। और पानी जो है मनीषा, वो शरीर को ठंडा रखने में सहायता भी करता है।
1: जी हाँ कशिश,
0: साथ ही घर से निकलने से पहले भोजन करना जरूरी है, क्योंकि खाली पेट जब अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें दोस्तों हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि घर से बाहर निकलते समय हमें टोपी या छाता या गमछे का उपयोग करना है। श्रोता साथियों, इससे सीधी धूप हमारे सर पर नहीं पड़ती है। साथ ही श्रोता साथियों, गर्मी में सफेद या हल्के रंग के सूती के कपड़े हमें पहनने हैं, इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। साथ ही कशिश, हम साथियों को कहना चाहेंगे कि नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी या बेल शरबत का भी वे उपयोग कर सकते हैं, इससे हमारे शरीर में ठंडक बनी रहती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, धूप में निकलते समय पूरे शरीर को कपड़ों से ढकना चाहिए, ताकि श्रोता साथियों गर्म हवाएं वो हमारे शरीर को ना लगे।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों, हमें गर्मी में खान पान का भी ध्यान रखना है। संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है कशिश, इसीलिए हमारे श्रोता साथियों को ताजे फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी का सेवन करना है। साथ ही उन्हें हल्की सब्जियां, दही और छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और फल का भी सेवन करना है। श्रोता साथियों, इन सभी का हम सेवन करेंगे तो हम लू से भी बच पाएंगे और साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। अब यही अगर श्रोता साथियों को बताएं तो हमें अपने बच्चों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखना है साथियों, जैसे कि बच्चे जो हैं वो गर्मी में खेलते समय अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: इसलिए मनीषा अभिभावकों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों को बार बार पानी पिलाना चाहिए, धूप में खेलने से रोकना चाहिए, हल्के कपड़े उन्हें पहनाने चाहिए, स्कूल जाते समय पानी की बोतल साथ देनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: और पौष्टिक भोजन भी देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से वे अपना ध्यान रखें। ऐसे में अभिभावक होने के नाते दोस्तों हमें ही बच्चों का ध्यान रखना होगा। अब अगर बात करें किसानों और मजदूरों की, तो किसान और मजदूर सबसे अधिक धूप में काम करते हैं मनीषा, ऐसा हम देखते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है।
1: जी जी,
0: जैसे कि सुबह और शाम के समय ही उन्हें अधिक काम करना है, दोपहर में उन्हें आराम करना है।
1: जी हाँ,
0: सिर पर कपड़ा बांधना चाहिए दोस्तों, यानी कि जो सिर है वो उसे ढक कर रखना है। पानी और छाछ का ज्यादा सेवन करना है और समय समय पर छाया में बैठते रहना है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों अगर ये सभी उपाय हमारे किसान और मजदूर अपनाएंगे तो वे लू की समस्या से कई हद तक खुद को बचा सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग लू को सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जानकारी के अभाव में लोग सही उपचार नहीं कर पाते हैं कशिश।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए गांवों में स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान और रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि हम बता रहे हैं, इस तरीके से भी हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: विद्यालयों, पंचायतों, स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा लोगों को लू से बचाने के लिए जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में तापमान लगातार बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इससे श्रोता साथियों, गर्मी अधिक बढ़ रही है और लू की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं।
0: जी हाँ,
1: यदि हमें भविष्य में इस समस्या से बचना है साथियों, तो पर्यावरण संरक्षण पर हमें ध्यान देना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पानी की बचत भी हमें करनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: और आपने जैसा कि सुनाई होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि दोस्तों हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन की खुशियों का आनंद भी हम नहीं ले पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए मौसम के अनुसार सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा कठिन होता है, लेकिन सही जानकारी और सतर्कता के माध्यम से हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं मनीषा। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में लू की समस्या एक गंभीर समस्या है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम इससे बच सकते हैं। ऐसे में पर्याप्त पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के कपड़े पहनना और सही खान पान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति मनीषा लू की चपेट में आकर गंभीर रूप से बीमार न हो।
1: जी बिल्कुल कशिश।
0: दोस्तों हमें स्वयं भी सावधान रहना है और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सावधानी ही सुरक्षा है। यदि हम समय रहते सही कदम उठाएंगे दोस्तों, तो गर्मियों में भी हम स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी पाएंगे।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे की पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी